0: পশ্চিমবঙ্গের উপকূলবর্তী অঞ্চলে সমুদ্রে বা নদীতে যারা মাছ ধরতে যান, আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর থেকে তাদের উদ্দেশ্যে কোনো সতর্কবার্তা নেই। আকাশবাণী কলকাতা, গীতাঞ্জলি। একটু পরে সঞ্জয়িতা প্রচার তরঙ্গে সংবাদ।
1: নমস্কার, আকাশবাণী সমাচার কে সাথ মে ফরহত নাজ। सरकार संसद में नीट से संबंधित सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सरकार के आश्वासन के बावजूद नीट मुद्दे पर चर्चा की अपनी पुरानी मांग से पीछे हट गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अन्य सदस्यों के साथ मिलकर नीट मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर लोक कल्याण मार्ग पर विरोध प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। मुलाकात के बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने इस मामले पर चर्चा की मांग मान ली है।
2: सरकार संसद में न केवल इस विषय को लेकर बल्कि इस विषय के साथ संबंधित अन्य सभी विषयों को विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि नीट और पेपर लीक इत्यादि विषयों को लेकर के जो लोग भी जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और हम अपने बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे।
1: नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए सभी विपक्षी नेताओं को दिल्ली पुलिस ने रिहा कर दिया है। इनमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी शामिल हैं। इन नेताओं को लोक कल्याण मार्ग के पास प्रदर्शन स्थल से हिरासत में लिया गया था।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तर मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में विस्तार का आह्वान किया है। उन्होंने दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर आधारित दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। स्कुब्जे में भारत उत्तरी मैसेडोनिया व्यापार फोरम में राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के बीच मौजूदा व्यापार वास्तविक क्षमता से बहुत कम है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस दशक के अंत तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना हो सकेगा। किसी भारतीय राष्ट्रपति की उत्तर मैसेडोनिया की पहली यात्रा द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता दर्शाती है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर की दो दिन की फिलीपींस यात्रा आज से शुरू हो रही है। वे मनीला में आसियान रूपरेखा के अंतर्गत विदेश मंत्री स्तर की बैठकों में शामिल होंगे। इनमें आसियान भारत ईस्ट एशिया सम्मेलन और आसियान रीजनल फोरम की बैठकें शामिल हैं। विदेश मंत्री ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमरीका के विदेश मंत्रियों के साथ क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भी शामिल होंगे। उनके द्विपक्षीय बैठकें करने की भी उम्मीद है। भारत ने अफगानिस्तान के नूरिस्तान में बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री भेजी है। खाद्य सामग्री और टेंट सहित अन्य राहत सामग्री अफगानिस्तान के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को भेजी गई है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत इस कठिन समय में अफगानिस्तान के संकटग्रस्त लोगों के साथ है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज तमिलनाडु का दौरा करेंगे। श्री राधाकृष्णन कोयम्बटूर में जीएनकेएनएम नर्सिंग कॉलेज के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति तिरुप्पुर में अविनाशी लिंगेश्वर शिव मंदिर भी जाएंगे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री श्री मोदी को विजयनगरम जिले के भोगपुरम में अलूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन के लिए आमंत्रित करेंगे। इस हवाई अड्डे का उद्घाटन 1 अगस्त को प्रस्तावित है। श्री चंद्रबाबू नायडू केंद्रीय मंत्रियों अमित शाह, पीयूष गोयल, मनोहर लाल खट्टर और सीआर पाटिल के साथ राज्य से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार के लिए ऑनलाइन नामांकन आमंत्रित किए हैं। ये पुरस्कार साहसिक गतिविधियों के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है। नामांकन 20 अगस्त तक गृह मंत्रालय के राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर कर सकते हैं। युवा कार्यक्रम विभाग ने माई भारत पोर्टल पर राष्ट्रीय ध्वज प्रश्नोत्तरी का शुभारंभ किया है। ये प्रश्नोत्तरी 15 अगस्त तक खुली रहेगी। इस पहल का उद्देश्य युवाओं में राष्ट्रीय ध्वज के इतिहास, विकास, महत्व और गरिमा के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इस प्रश्नोत्तरी में बहुविकल्पीय 20 प्रश्न है। 10 मिनट के अंदर इनके उत्तर देने होंगे। हॉकी इंडिया ने हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय पुरुष टीम की घोषणा कर दी है। विश्व कप 15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड्स में आयोजित किया जाएगा। टीम की कमान हरमनप्रीत सिंह संभालेंगे। भारत का पहला मैच 15 अगस्त को वेल्स के साथ होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अनुज लक्ष्मण तथा भार्या सीता के साथ पर्णकुटी में निवास करते हुए श्रीराम इस प्रकार सुशोभित हैं, जिस प्रकार इंद्र अपनी पत्नी शची तथा पुत्र जयंत के साथ अमरावती में सुखपूर्वक निवास करते हैं। किंतु उधर अयोध्या पर आसन्न शोक का आभास पशु पक्षियों की उस व्याकुलता से मिलता है जो निषाद राजगुह ने वापस आकर देखा। रथ के साथ सुमंत्र को आकुल देखकर निषाद राजगुह को अत्यंत दुख हुआ। निषाद राज को अकेले लौट आया देख सुमंत्र हा राम हा लक्ष्मण हा सीते कहकर धरती पर गिर पड़े। रथ में जुते अश्व

दक्षिण दिशा की ओर देख देख कर जिधर उन्होंने राम को जाते देखा था, जैसे करुण हिन हिनाहट में अपनी व्यथा व्यक्त कर रहे हैं। चारा पानी छोड़ उनके नेत्रों से अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं। निषाद राज ने सुमंत्र को पंडित और ज्ञानी संबोधित करके समझाया, अब विषाद छोड़ विधाता को प्रतिकूल जानकर धैर्य धारण कीजिए। रथ पर बिठाए जाने के बाद भी शोक से शिथिल हुए सुमंत्र से रथ हाँका नहीं जाता। घोड़ों को शोकातुर देख निषाद राज भी विह्वल हो गए। उन्होंने अपने चार सेवक सारथी के साथ कर दिए, जो रथ को अयोध्या की ओर ले चले।

0: শুনলেন ভক্তিগীতি সঙ্গীতা সেনের কণ্ঠে। আকাশবাণী কলকাতা অনুষ্ঠান শুনছেন সঞ্চয়িতা প্রচার তরঙ্গে। স্টুডিওর ঘড়িতে এখন সকাল 6:54 হয়ে 45 সেকেন্ড। একটু পরে দিল্লি কেন্দ্রের সংবাদ।
1: एम आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका ऋचा झा। प्रशासनेन उक्तं यत् नीट प्रश्नपत्र अनधिकृत प्रकाशन प्रकरणे तदनुबद्ध विषयेषु च संसदि चर्चायै प्रशासनं सज्जमस्ति। ह्यः नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् केन्द्रीय मन्त्री जितेन्द्र सिंहः लोकसभायां विपक्ष नेतारं राहुल गांधिनम् आरोपितवान् यत् प्रशासनस्य आश्वासनस्य अनन्तरमपि सः नीट विषयक चर्चायाः स्वपूर्वामाग्रहात् निवृत्तः।
2: सरकार संसद में न केवल इस विषय को लेकर बल्कि इस विषय के साथ संबंधित अन्य सभी विषयों को विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि नीट और पेपर लीक इत्यादि विषयों को लेकर के जो लोग भी जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और हम अपने बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे।
1: पूर्वाहणे कांग्रेस दलस्य अध्यक्षः मल्लिकार्जुन खड्गे राहुल गांधी प्रियंका गांधी वाड्रा अन्ये दलसदस्याः नीट विषयक चर्चामाधृत्य प्रदर्शनम् अकुर्वन्। केन्द्रीय मन्त्री जितेन्द्र सिंहः तथा केन्द्रीय गृह सचिवः गोविन्द मोहनः लोककल्याण मार्गस्थते प्रदर्शनस्थले कांग्रेस नेतृभिः सह मेलनं कृतवन्तौ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। सरकार संसद में नीट से संबंधित सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सरकार के आश्वासन के बावजूद नीट मुद्दे पर चर्चा की अपनी पुरानी मांग से पीछे हट गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अन्य सदस्यों के साथ मिलकर नीट मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर लोक कल्याण मार्ग पर विरोध प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। मुलाकात के बाद डॉ जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने इस मामले पर चर्चा की मांग मान ली है।
1: सरकार संसद में न केवल इस विषय को लेकर बल्कि इस विषय के साथ संबंधित अन्य सभी विषयों को विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि नीट और पेपर लीक इत्यादि विषयों को लेकर के जो लोग भी जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और हम अपने बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तरी मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में विस्तार का आह्वान किया है। उन्होंने दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर आधारित दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। स्कोपिये में भारत उत्तरी मैसेडोनिया व्यापार फोरम में राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के बीच मौजूदा व्यापार वास्तविक क्षमता से बहुत कम है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस दशक के अंत तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना हो सकेगा। किसी भारतीय राष्ट्रपति की उत्तर मैसेडोनिया की पहली यात्रा द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। राष्ट्रपति ने डिजिटल नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस

0: इंटेलिजेंस, औषधि और स्वास्थ्य क्षेत्र, कृषि प्रसंस्करण और हरित ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग पर बल दिया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की दो दिन की फिलीपींस यात्रा आज से शुरू हो रही है। वे मनीला में आसियान रूपरेखा के अंतर्गत विदेश मंत्री स्तर की बैठकों में शामिल होंगे। इनमें आसियान भारत ईस्ट एशिया सम्मेलन और आसियान रीजनल फोरम की बैठकें शामिल हैं। विदेश मंत्री ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमरीका के विदेश मंत्रियों के साथ क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भी शामिल होंगे। भारत ने अफगानिस्तान के नूरिस्तान में बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री भेजी है। खाद्य सामग्री और टेंट सहित अन्य राहत सामग्री अफगानिस्तान के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को भेजी गई है। विदेश मंत्रालय ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि भारत इस कठिन समय में अफगानिस्तान के संकटग्रस्त लोगों के साथ है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह चेतावनी दी है कि अमरीका हर उस स्थल पर जोरदार हमले करता रहेगा जहां ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम फिर शुरू करने का प्रयास करेगा। व्हाइट हाउस में लेबनन के राष्ट्रपति जोसेफ फाउन की उपस्थिति में श्री ट्रंप ने यह दावा किया कि ईरान तनाव जारी रखने के बावजूद बातचीत की कोशिश में है। ईरान को होर्मुज जलडमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमला न करने की चेतावनी देते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ऐसा होने पर अमरीका 10 गुना अधिक हमले करेगा। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार के लिए ऑनलाइन नामांकन आमंत्रण किए हैं। ये पुरस्कार साहसिक गतिविधियों के क्षेत्र में उत्कृष्ट गतिविधियों के लिए सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है। नामांकन 20 अगस्त तक गृह मंत्रालय के राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर किए जा सकते हैं। युवा कार्यक्रम विभाग ने माई भारत पोर्टल पर राष्ट्रीय ध्वज प्रश्नोत्तरी का शुभारंभ किया है। ये प्रश्नोत्तरी 15 अगस्त तक खुली रहेगी। इस पहल का उद्देश्य युवाओं में राष्ट्रीय ध्वज के इतिहास, विकास, महत्व और गरिमा के प्रति जागरूकता को बढ़ाना है। प्रश्नोत्तरी में बहुविकल्पीय 20 प्रश्न हैं और 10 मिनट के अंदर इनके उत्तर देने होंगे। हॉकी इंडिया ने हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यों वाली पुरुष टीम की घोषणा कर दी है। विश्व कप 15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड्स में आयोजित किया जाएगा। और इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. President Drobdi Murmu has called for expanding India-North Macedonia economic ties, urging businesses from both countries to move beyond trade and forge long-term partnerships based on investment, technology and innovation. Addressing the India-North Macedonia Business Forum in Skopje, President Murmu said her visit, the first ever by an Indian president to North Macedonia, reflects India's strong commitment to strengthening relations. President Murmu invited North Macedonia to collaborate with India on digital public infrastructure, highlighting the success of India's UPI platform in promoting financial inclusion.
2: आर्थिक सहयोग हमारे द्विपक्षीय संबंधों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ है। हम अपने द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर भी सहमत हुए। हमने आईटी, कृषि, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स तथा टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और फिल्म मेकिंग सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा। हम स्वास्थ्य सेवा में सहयोग पर अपने द्विपक्षीय अग्रीमेंट को भी रिन्यूअल कर रहे हैं।
1: India will host a three-day meeting of BRICS health ministers in Chandigarh beginning today. It will bring together health ministers and senior health officials from BRICS member countries to deepen cooperation on health security, digital health, pandemic preparedness and equitable access to quality health care. Union Health Secretary Punya Salila Srivastava told the media persons that the meeting reflects India's commitment to advancing collective action on key global health priorities through the guiding theme of Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. Prime Minister Narendra Modi has vowed strict action against those involved in the recent NEET examination paper leak case and safeguarding the interests of the country's youth. He said the government is taking several measures.

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तर मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में बड़े विस्तार का आह्वान किया। दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह। भारत आज चंडीगढ़ में ब्रिक्स देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की तीसरी बैठक की अध्यक्षता करेगा। भारतीय नौसेना आज पनडुब्बी रोधी स्वदेशी युद्धपोत INS मालवण का कर्नाटक के कारवार में जलावतरण करेगी। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने होनहार छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने की योजना मंजूर की। भारत ने जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन की व्यापार नीति समीक्षा में नियम आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की प्रतिबद्धता दोहराई। और चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज पीवी सिंधु का सामना उन्नति होटा से होगा। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तरी मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में महत्वपूर्ण विस्तार का आह्वान किया है। उन्होंने दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर आधारित दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। स्कोपिये में भारत उत्तरी मैसेडोनिया व्यापार फोरम में राष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया कि दोनों देशों के बीच इस दशक के अंत तक द्विपक्षीय व्यापार

0: दोगुना हो सकेगा।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत का औषधि उद्योग नॉर्थ मैसेडोनिया में दवाओं और चिकित्सक उपकरणों के संयुक्त उत्पादन में निवेश कर सकता है। उन्होंने खाद्य प्रसंस्करण, कोल्ड चेन, नवीकरणीय ऊर्जा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा और स्टार्टअप क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का आग्रह किया। राष्ट्रपति ने नॉर्थ मैसेडोनिया को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, आपदारोधी अवसंरचना और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन जैसी पहल से जुड़ने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने अगले वर्ष भारत में आयोजित होने वाले वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेव्स में भाग लेने को भी आमंत्रित किया। नॉर्थ मैसेडोनिया से शुभाश्री की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से पूजा।
0: भारत की मेजबानी में ब्रिक्स देशों की स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक आज चंडीगढ़ में शुरू हो रही है। 3 दिन की इस बैठक में मुख्य रूप से स्वास्थ्य सुरक्षा, डिजिटल स्वास्थ्य, महामारी से निपटने की तैयारी और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक सबकी पहुंच पर विचार विमर्श होगा।
2: यह बैठक स्वास्थ्य संबंधी प्रमुख वैश्विक प्राथमिकताओं पर सामूहिक कार्रवाई के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। मंत्री स्तरीय बैठक में पारंपरिक और पूरक चिकित्सा, स्वस्थ जीवन शैली, मानसिक आरोग्य तथा सुदृढ़ स्वास्थ्य प्रणाली जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। आधिकारिक कार्यक्रम की शुरुआत आज वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक से होगी। इसके बाद कल केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ब्रिक्स देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक आयोजित की जाएगी। सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारतीय नौसेना आज कर्नाटक के कारवार में माहे श्रेणी के दूसरे पनडुब्बी रोधी युद्धपोत INS मालवण को बेड़े में शामिल करेगी। ये भारत के स्वदेशी युद्धपोत निर्माण में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। समारोह में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह मुख्य अतिथि होंगे।
3: कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में निर्मित INS मलवान आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के अंतर्गत तैयार किया गया है। इसमें 80% से अधिक स्वदेशी उपकरण और तकनीक का उपयोग किया गया है। इसमें RBO 6000 रॉकेट और DRDO द्वारा विकसित टॉर्पेडोज की शक्ति है। जर्मनी और भारत द्वारा तैयार किए गए सोनार का उपयोग भी किया गया है। माहे श्रेणी के इस युद्धपोत तटीय और उथले समुद्र क्षेत्र में प्रभावी परिचालन के लिए बनाया गया है। इससे नौसेना की समुद्री सुरक्षा और पनडुब्बी रोधी क्षमता और मजबूत होगी। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
4: भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ieefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
5: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश सरकार ने होनहार छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने का फैसला किया है। उच्च शिक्षा में लड़कियों की भागीदारी को बढ़ाने और पढ़ाई बीच में छोड़ने की दर को कम करने के लिए ये कदम उठाया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना को लागू करने के लिए दिशा निर्देशों को मंजूरी दी गई।
2: योजना के तहत सरकार न केवल स्कूटर बल्कि उसका बीमा, पंजीकरण, हेलमेट, आवश्यक सहायक उपकरण और 4 लीटर पेट्रोल भी मुहैया कराएगी। दिव्यांग छात्राओं, शहीदों की बेटियों और गरीब परिवारों की बेटियों के लिए आय सीमा की शर्त में छूट भी दी जाएगी। राज्य सरकार का कहना है कि ये योजना उच्च शिक्षा में बेटियों की भागीदारी बढ़ाएगी और खासतौर पर ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों की छात्राओं के लिए कॉलेजों और विश्वविद्यालयों तक पहुँचना आसान बनाएगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।

0: मध्य प्रदेश विधानसभा ने समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पारित कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सदन में विपक्ष के हंगामे और विरोध के बीच ये विधेयक पारित हुआ।
1: यूसीसी के प्रमुख प्रावधानों के अनुसार प्रदेश में एक से अधिक विवाह मान्य नहीं होगा, तलाक की प्रक्रिया कानूनी होगी और महिला पुरुष को समान उत्तराधिकार का अधिकार मिलेगा। लिव इन रिलेशनशिप में एक महीने के भीतर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा और विवाह का रजिस्ट्रेशन ग्रामीण स्तर तक जरूरी किया जाएगा। हालांकि आदिवासी समाज को इससे अलग रखा गया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कांग्रेस सहित पूरे विपक्ष पर मर्यादा का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। श्री नवीन ने कहा कि सरकार सदन में नीट सहित सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है।
2: पर मैं कहूंगा कांग्रेस और विपक्ष के साथियों से, हम संसद के पटल पर हर प्रकार के संवाद के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन आपकी जो मर्यादाएं तोड़ने की परंपरा बनती जा रही है, जो अराजकतावती सोच आपके अंदर विकसित हो रहा है, निश्चित रूप से इससे देश कहीं न कहीं दुखी है और देश अपने यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है।
0: भारत ने विश्व व्यापार में अपनी बढ़ती भूमिका पर बल देते हुए जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन की व्यापार नीति समीक्षा में नियम आधारित, पारदर्शी और भेदभाव रहित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की प्रतिबद्धता दोहराई है। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने वैश्विक व्यापार प्रणाली में भारत की भूमिका तथा व्यापार संधि, उदार विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और विकासशील देशों के बीच सहयोग से व्यापारिक संबंध मजबूत करने के प्रयासों पर बल दिया। वाणिज्य विभाग ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत समावेशी वैश्विक विकास में भरोसेमंद और विश्वसनीय साझेदार है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु का मुकाबला भारत की ही उन्नति हुड्डा से होगा। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन भी आज अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। पुरुष सिंगल्स के ही शुरुआती दौर में आज आयुष शेट्टी का सामना अलवी फरहान से होगा। पुरुष डबल्स में एमआर अर्जुन और हरिहरन अम्स करुणन, मिक्स्ड डबल्स में रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गड्डे तथा तनिषा क्रेस्टो और ध्रुव कपिला भी चुनौती पेश करेंगे। इसके अलावा हॉकी इंडिया ने हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय पुरुष टीम की घोषणा की है। विश्व कप 15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड्स में आयोजित किया जाएगा। भारतीय टीम की कमान हरमनप्रीत सिंह संभालेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित पवार की जयंती पर उनका स्मरण किया है। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि समाज के प्रति उनकी सेवा और महाराष्ट्र के विकास में उनका योगदान सदैव याद रखा जाएगा। फ्रांस की संसद ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का ऐतिहासिक विधेयक पारित कर दिया है। संसद के दोनों सदनों में सांसदों ने इस विधेयक के समर्थन में वोट दिया। इसके तहत स्कूल में विद्यार्थियों के मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर भी पाबंदी लगा दी गई है। इस फैसले से फ्रांस सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश बन जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अगस्त 2028 से जेनेरिक दवाओं के आयात पर भारी शुल्क लगाने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य अमेरिका में इन दवाओं का उत्पादन बढ़ाना है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि 1 अगस्त से अमेरिका में आयात होने वाली सभी जेनेरिक दवाओं पर 2 साल तक कोई शुल्क नहीं लगेगा। मौसम विभाग ने आज गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। अगले 2-3 दिनों के दौरान पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश और पंजाब में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। ये समाचार हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नास।
4: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर नीट पेपर लीक मामले को लेकर विपक्ष के धरने, छात्रों के विरोध प्रदर्शन और पेपर लीक पर प्रधानमंत्री मोदी के बयान संबंधी समाचार सबसे ऊपर छाए हुए हैं। नवभारत टाइम्स का शीर्ष समाचार है, जंतर मंतर पर लौटी भीड़, पीएम के घर के बाहर से विपक्ष के नेता हटाए। पत्र ने प्रधानमंत्री मोदी के कथन को भी सुर्खियों में जगह दी है, पेपर लीक के दोषियों को नहीं बख्शा। दैनिक जागरण की सुर्खी है, प्रधानमंत्री मोदी ने नीट पेपर लीक को बताया घोर पाप। राजस्थान पत्रिका, लोकसत्य, दैनिक ट्रिब्यून और अमर उजाला

0: धरना दे रहे विपक्षी नेताओं की तस्वीरें भी प्रमुखता से छापी हैं। जनसत्ता और दैनिक भास्कर ने सिक्किम में एक निर्माणाधीन सुरंग ढहने से हुई मजदूरों की मौत के समाचार को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। पत्रों ने केंद्र और राज्य सरकार की ओर से मजदूरों के आश्रितों को अनुग्रह राशि की घोषणा का उल्लेख करते हुए सुरंग के प्रवेश द्वार और राहत अभियान का चित्र प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने पॉजिटिव न्यूज स्तंभ के अंतर्गत राजस्थान के आंधी गांव का उल्लेख किया है, जिसे बायोटेक वैज्ञानिक डॉक्टर सुदीप्ति अरोड़ा ने 100% कचरा रहित और आत्मनिर्भर बना दिया है। पंजाब केसरी ने कमर्शियल जहाज पर हुए रूसी हमले में 4 भारतीय नागरिकों की मौत के बाद रूसी राजनयिक को तलब किए जाने का समाचार सबसे ऊपर प्रकाशित किया है। जनसत्ता ने इसी खबर पर आधारित संपादकीय को शीर्षक दिया है, सुरक्षा की फिक्र। पत्र का कहना है कि भारत से हर साल बड़ी संख्या में लोग रोजगार के लिए विदेश जाते हैं और वहां से विदेशी मुद्रा यहां भेजते हैं, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूती मिलती है। मगर सवाल ये है कि विदेश में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है।
1: और लीजिए अंत में सुनिए मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तर मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में बड़े विस्तार का आह्वान किया। दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह। भारत आज चंडीगढ़ में ब्रिक्स देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की तीसरी बैठक की अध्यक्षता करेगा। भारतीय नौसेना आज पनडुब्बी रोधी स्वदेशी युद्धपोत INS मालवण का कर्नाटक के कारवर में जलावतरण करेगी। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने होनहार छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने की योजना मंजूर की। भारत ने जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन की व्यापार नीति समीक्षा में नियम आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की प्रतिबद्धता दोहराई। और चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज PV सिंधु का मुकाबला होगा उन्नति हुड्डा से। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. President Draupadi Murmu calls for significant expansion of economic engagement between India and North Macedonia, urges businesses from both countries to move beyond trade and build long-term partnerships. India to host 3-day meeting of BRICS health ministers in Chandigarh beginning today. Indian Navy to commission indigenous anti-submarine warfare shallow water craft INS Malwan at Karwar in Karnataka today. Uttar Pradesh Cabinet approves scheme to provide free scooty to meritorious female students of the state. India reaffirms its commitment to rule-based multilateral trading system at WTO Trade Policy Review in Geneva, and PV Sindhu to take on compatriot Unnati Huda in China Open Badminton Tournament today. And now the news in detail. President Draupadi Murmu has called for expanding India-North Macedonia economic ties, urging businesses from both countries to move beyond trade and forge long-term partnerships based on investment, technology and innovation. Addressing the India-North Macedonia Business Forum in Skopje, President Murmu said her visit, the first ever by an Indian president to North Macedonia, reflects India's strong commitment to strengthening relations. President Murmu also invited North Macedonia to collaborate with India on digital public infrastructure, highlighting the success of India's UPI platform in promoting financial inclusion.
3: आर्थिक सहयोग हमारे द्विपक्षीय संबंधों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ है। हम अपने द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर भी सहमत हुए। हमने IT, कृषि, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स तथा टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और फिल्म मेकिंग सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा। हम स्वास्थ्य सेवा में सहयोग पर अपने द्विपक्षीय अग्रीमेंट को भी रिन्यूअल कर रहे हैं।
2: Our correspondent covering the president's visit to North Macedonia has filed this report.
4: President Murmu said India's pharmaceutical industry is well placed to invest in North Macedonia through joint manufacturing of medicines and medical devices for the wider Balkan and European markets. She also encouraged partnerships in food processing, cold chain logistics, renewable

मीडियम वेव 297.6 मीटर यानी 1008 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी कोलकाता का संचेता चैनल है। सुबह के 9:10:43 आपकी दोस्त सविता सभी दोस्तों का स्वागत करती है कार्यक्रम रस धारा में।

जी हाँ दोस्तों, कोई भी उम्र का मोड़ हो, लेकिन खुद को स्वस्थ रखना ये हर उम्र की जरूरत है। दोस्तों बिल्कुल रसधारा कार्यक्रम आरंभ हो चुका है 9:10 से, और मैं हूँ आपके साथ आपके दोस्त सविता। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। और आज हमारे कार्यक्रम की जो थीम है वो यही है कि पोषण पर संयुक्त राष्ट्र दशक, यानी एक प्रतिबद्धता है हमारी इसके अंदर कि सभी सदस्य देशों ने नीतियों, कार्यक्रमों और निवेशों में वृद्धि करके कुपोषण के सभी रूपों को समाप्त करने का संकल्प लिया है। बिल्कुल दोस्तों, कुपोषण को समाप्त करना हम सभी की जिम्मेदारी है और जागरूकता भी होनी चाहिए, और इसी के तहत आज हम आपके समक्ष ये कार्यक्रम पेश कर रहे हैं। आज का कार्यक्रम रसधारा इसी थीम पर आधारित है, तो चलिए बातें और भी करेंगे, लेकिन पहले अरिजीत सिंह की आवाज़ में ये गीत।

जी हाँ दोस्तों, 24 मार्च 2025 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संयुक्त राष्ट्र दशक को लेकर पोषण पर जोर दिया, जो मूल रूप से 2016-2025 तक 2030 तक बढ़ाने का प्रस्ताव पारित किया गया। इस विस्तार का उद्देश्य था कि 2030 तक वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर युवाओं के सभी सिद्धांतों को समाप्त करने की राजनीतिक गति को बनाए रखना और इसके सदस्यों को सतत विकास के लिए बनाए रखना है। इस प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा की 62वीं पूर्ण बैठक के दौरान पारित किया गया और इसे व्यापक समर्थन मिला। 158 सदस्य राष्ट्र ने पक्ष में मतदान किए और 139 सदस्य राष्ट्र ने सह प्रस्तावक के रूप में समर्थन भी किया। तो दोस्तों, सभी लोग जीवन के हर चरण में समृद्ध, विविध, सुरक्षित और स्वस्थ आहार प्राप्त कर सकें, इसके लिए सभी ने सहयोग में सहमति व्यक्त की। इस दशक का उद्देश्य है वैश्विक पोषण और आहार एसोसिएटेड गैर सरकारी उद्यमों की दिशा में प्रगति को गति देना और पोषण को सर्वोच्च राजनीतिक स्तर पर प्राथमिकता देना। दोस्तों, हर इंसान चाहता है कि मैं देखने में खूबसूरत लगूं, और जैसे हमारे अभिनेता अभिनेत्री होते हैं, हम उनकी तरह ही बनने की इच्छा करते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है ना कि खुद को हम पोषित करें।

दोस्तों, कई बार होता है कि हम अपने पोषण को सुंदरता से, खूबसूरती से जोड़ देते हैं, जबकि हकीकत यह है कि हमारे शरीर के अंदर कौन से पौष्टिक पदार्थ जा रहे हैं, पोषण सच में वो है। हमारे पोषण पर संयुक्त राष्ट्र दशक का जो उद्देश्य है वो यही है कि सभी प्रकार के जो कुपोषण हैं वो समाप्त हो जाएं, जैसे कम वजन, बोनापन और मोटापे को मिटाना, स्वस्थ आहार, हर व्यक्ति के लिए किफ़ायती, विविध, सुरक्षित और स्वस्थ आहार सुनिश्चित करना, सतत विकास होना। 2030 तक सतत विकासों के लक्ष्य के साथ इसको जोड़ा गया है। इस प्रस्ताव में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन और विश्व स्वास्थ्य संगठन से भी इस दशक के नेतृत्व और पर्यवेक्षण जारी करने पर वैश्विक पोषण वैशिष्ट को आगे बढ़ाने के प्रयास को किया गया है और मजबूती से यह बात रखी गई है। विश्व 2030 तक भूख और कुपोषण को समाप्त करने के लक्ष्य से ना भटके और सभी देशों को राष्ट्रीय स्तर पर पोषण के लिए निवेश में वृद्धि करनी होगी, तभी कुपोषण समाप्त होगा। सिर्फ बाहरी सुंदरता हमारे कुपोषण होने पर उसे ठीक नहीं कर सकती, उसके लिए हमें हमारे शरीर पर निश्चित रूप से ध्यान रखना होगा और पौष्टिक पदार्थों को का आहार करना होगा।

दोस्तों बहुत खूबसूरत हो ये सुंदर वाक्य तो हमें तभी सुनने के लिए मिलेगा जब हम भीतर से भी स्वस्थ होंगे। उसका जो राज है वो हमारे चेहरे पर दिखाई देने लगेगा। लेकिन जब आपका चेहरा खूबसूरत है और भीतर से आप कुपोषित हैं और भीतर से आपके अंदर न्यूट्रिशंस की कमी है तो वो चेहरे पर पीलापन भी दिखने लगता है। लोग पूछने ही लगते हैं, क्या हुआ भाई, बीमार हो क्या? बिल्कुल ऐसा ही होता है, खूबसूरत चेहरा भी बीमार दिखने लगता है यदि पोषण ठीक से ना हो। इसीलिए भूख और रुचि के सभी सिद्धांतों को समाप्त करना सबसे जरूरी है। अधिकांश देश में कुपोषण और आहार संबंधी गैर संचारी विक्रेता जैसे हृदय रोग, मधुमेह, कैंसर, मोटापे के शिकार लोगों का सामना कर रहे हैं। पोषण पर संयुक्त राष्ट्र दशक की कार्रवाई राष्ट्रों के सदस्य देशों की संयुक्त रिपोर्ट में भी कहा गया है कि सभी देशों और सभी शिक्षाओं में गरीबों को समाप्त करने के लिए समूह कार्यक्रम और निवेश के सतत और संगठनात्मक संगठन को अपनाएंगे ताकि कोई भी पीछे ना छूटे।

आर्थिक कमजोरी हो या फिर कोई मजबूरी हो, हमारी जो कुपोषण की जो शैली है उसको समाप्त करना ही है। इसके लिए सभी को मिलजुल करके काम करना होगा। और यदि घर में कोई बीमार होता है या फिर किसी कारण से घर में आहार पोषित नहीं मिल पाता तो फिर दिल दुखता है और किसी के हॉस्पिटल जाने से भी दिल उदास रहता है।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

फिल्म मैं तुलसी तेरे आंगन की का ये गीत आपने सुना। आवाज़ लता मंगेशकर की, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतबद्ध किया लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने। ये आकाशवाणी कोलकाता का संचेता चैनल है। दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रसधारा, और रसधारा में आज हम बात कर रहे हैं संयुक्त राष्ट्र का पोषण दशक की। दोस्तों पोषण की यदि हम बात करें तो हमारे देश में भी विभिन्न पोषण पूरक कार्यक्रम चल रहे हैं, जैसे कि एकीकृत बाल विकास सेवा योजना, ICDS का मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम, विशेष पोषण कार्यक्रम, गेहूं आधारित पोषण कार्यक्रम, इसके अलावा व्यवहारिक पोषण कार्यक्रम, बालवाड़ी पोषण कार्यक्रम, राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम। तो बस सोचना क्या है, हम भी अपने कदम को एक और आगे बढ़ाते हैं और पोषण विकास में हम सरकार की साथ कदम से कदम बढ़ाकर चलें, उनका हम सहयोग दें।

जी हाँ दोस्तों, इससे बड़ी क्या खुशी की जब साथ हैं अपने सभी। बिल्कुल दोस्तों, इसलिए सोचना क्या कि हम पोषित भोजन खाएं या ना खाएं। स्वस्थ शरीर और बेहतर कामकाज के लिए 7 मुख्य पोषक तत्व आवश्यक हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, मिनरल्स, फाइबर और पानी। कार्बोहाइड्रेट्स ये शरीर की मुख्य ऊर्जा प्रदान करता है। इसके प्रमुख स्रोत हैं अनाज, चावल, आलू। और प्रोटीन ये शरीर के निर्माण, मांसपेशियों के विकास और ऊतकों की मरम्मत के लिए आवश्यक हैं। दालें, अंडे, मछली, इन सब में प्रोटीन पाया जाता है। वसा ये शरीर को ऊर्जा देने के साथ साथ अंगों की सुरक्षा भी करता है और विटामिन को अवशोषित करने में मदद करता है। मेवे, तेल इसके मुख्य स्रोत हैं। इसके अलावा दोस्तों, विटामिन्स भी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने और बुनियादी क्रियाओं को चलाने के लिए ज़रूरी है। फल और हरी सब्जियां यदि हम खाएंगे तो निश्चित रूप से विटामिन हमें मिल ही जाएगा। इसके अलावा यदि खनिज की बात करें तो खनिज हड्डियों को मजबूत करता है, नसों के लिए कार्य करता है और कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम जैसे खनिज महत्वपूर्ण हमें देता है। आहार फाइबर ये पाचन क्रिया को स्वस्थ रखता है, कब्ज जैसी समस्याओं से बचाता है, इसलिए कहते हैं ना फाइबर खाना बहुत ज़रूरी है। पानी, पानी शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। कोशिकाओं और पोषक तत्व पहुंचाने के लिए पानी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये जो 7 प्रकार के पोषण तत्व हैं, ये हमारे पोषक को बेहतरीन करते हैं, मजबूत करते हैं, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत करते हैं, हमें इम्यून करते हैं और हमें एक ऐसा स्वस्थ

स्वस्थ शरीर देते हैं जिसके अंदर स्वस्थ दिमाग बसता है। तो ऊपर की खूबसूरती के लिए अंदर की खूबसूरती जरूरी है, ये बात तो समझ आ गई होगी ना दोस्तों। तो बस हम इतनी ही बात करते करते अब फिलहाल आपकी दोस्त सविता आपसे लेगी इजाज़त। मुलाकात होगी 12 बजे हिंदी कार्यक्रम सुरभि में, बातें करेंगे ढेर सारी तब भी। तो दोस्तों फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, खुश रहिए, हंसते रहिए, गाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हाँ हमारा संचेता चैनल जरूर सुनते रहिए। मीडियम वेव 297.6 मीटर यानी 1008 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे थे कार्यक्रम रसधारा आपकी दोस्त सविता के साथ, और चैनल था संचेता। तो आकाशवाणी कोलकाता संचेता चैनल पर फिलहाल के लिए इजाज़त, और चलते चलते दामिनी फिल्म का ये गीत कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तरी मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में महत्वपूर्ण विस्तार का आह्वान किया है। उन्होंने दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर आधारित दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। स्कोपिया में भारतीय उत्तरी मैसेडोनिया व्यापार फोरम में राष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया कि दोनों देशों के बीच इस दशक के अंत तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना हो सकेगा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि उथल पुथल और व्यवधानों के इस दौर में सबसे अधिक असर आपूर्ति श्रृंखला पर पड़ा है। फिलीपींस के मनीला में आज आसियान मंत्री स्तरीय सम्मेलन में श्री जयशंकर ने कहा कि ऊर्जा, खाद्य और स्वास्थ्य सुरक्षा को और अधिक समय तक हल्के में नहीं लिया जा सकता। उन्होंने कहा कि भारत और आसियान देश अपने भविष्य के प्रति आशावादी हैं और इसीलिए चुनौतियों का सामना करते हुए अवसरों पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ये वर्ष आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष है। विदेश मंत्री आसियान भारत पूर्वी एशिया सम्मेलन और आसियान क्षेत्रीय फोरम की बैठक सहित आसियान फ्रेमवर्क के तहत विदेश मंत्री स्तर की बैठक के लिए दो दिन की यात्रा पर फिलीपींस के मनीला में है। भारत की मेजबानी में ब्रिक्स देशों की स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक आज चंडीगढ़ में शुरू हो रही है। तीन दिन के इस बैठक में मुख्य रूप से स्वास्थ्य सुरक्षा, डिजिटल स्वास्थ्य, महामारी से निपटने की तैयारी और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक सबकी पहुंच पर विचार विमर्श होगा।
1: यह बैठक स्वास्थ्य संबंधी प्रमुख वैश्विक प्राथमिकताओं पर सामूहिक कार्रवाई के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। मंत्री स्तरीय बैठक में पारंपरिक और पूरक चिकित्सा, स्वस्थ जीवन शैली, मानसिक आरोग्य तथा सुदृढ़ स्वास्थ्य प्रणाली जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। आधिकारिक कार्यक्रम की शुरुआत आज वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक से होगी। इसके बाद कल केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ब्रिक्स देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक आयोजित की जाएगी। सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत ने विश्व व्यापार में अपनी बढ़ती भूमिका पर बल देते हुए जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन की व्यापार नीति समीक्षा में नियम आधारित, पारदर्शी और भेदभाव सहित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की प्रतिबद्धता दोहराई है। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने वैश्विक व्यापार प्रणाली में भारत की भूमिका तथा व्यापार संधि, उदारवादी प्रत्यक्ष निवेश और विकासशील देशों के बीच सहयोग से व्यापारिक संबंध मजबूत करने के प्रयासों पर बल दिया। भारतीय नौसेना आज कर्नाटक के कारवार में माहे श्रेणी के दूसरे पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आईएनएस मालवन को बेड़े में शामिल करेगी। ये भारत के स्वदेशी युद्धपोत निर्माण में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उत्तर प्रदेश सरकार ने होनहार छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने का फैसला किया है। उच्च शिक्षा में लड़कियों की भागीदारी बढ़ाने और पढ़ाई बीच में छोड़ने की दर को कम करने के लिए ये कदम उठाया गया है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में पुलिस ने आतंकवादियों को शह और सहायता देने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी छतरू इलाके में सक्रिय विदेशी आतंकवादियों की मदद कर रहा था। इसकी पहचान सिंहपुर के डवाथर निवासी मोहम्मद रफीक नाइक के तौर पर हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यक्तिगत, सामाजिक और राष्ट्रीय कर्तव्य निभाने में एक आदर्श और उत्कृष्ट नागरिक के गुणों को रेखांकित किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एक संस्कृत उदाहरण साझा करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही। आज राष्ट्रीय आम दिवस है। ये दिन फलों के राजा आम और भारत की समृद्ध आम परंपरा के सम्मान में मनाया जाता है। गोवा का प्रसिद्ध मनकुराद आम अपनी खास खुशबू, मिठास और अनोखे स्वाद के लिए जाना जाता है। जम्मू कश्मीर सरकार ने कश्मीर संभाग और जम्मू के ठंडे इलाकों के स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां 26 जुलाई तक बढ़ा दी हैं। शिक्षा मंत्री सकीना इत्तू ने बताया कि अब स्कूल 27 जुलाई को खुलेंगे।

मीडियम वेव 297.6 मीटर यानी 1008 किलो हर्ट्ज पर। यह है आकाशवाणी कोलकाता का चैनल संचयिता। पेशे खिदमत है रोजाना उर्दू प्रोग्राम अंजुमन। माइक्रोफोन पर हाजिर है आपकी मेजबान सादिया सदफ। तमाम सुनने वालों को सादिया का पुरखलूस आदाब। इस अंजुमन के रंग से वाकिफ हैं आप सब, ये अहले दिल के वास्ते ही एहतमाम है। अंजुमन का आगाज आईने से। आज के आईने में शामिल है नेशनल फ्लैग डे, कौमी परचम का दिन, जिसे कौमी परचम अपनाने का दिन भी कहा जाता है। हर साल 22 जुलाई को पूरे हिंदुस्तान में मनाया जाता है। ये दिन आज़ादी से कुछ देर पहले 1947 में दस्तूर साज असेंबली के जरिया हिंदुस्तानी परचम के तारीखी इख्तियार की याद मनाता है। तिरंगा हिम्मत, अमन और ईमान की अलामत है, जिसके मरकज में अशोक चक्र है जो अबदी तरक्की की नुमाइंदगी करता है। कौमी परचम का दिन 2026 का मुशाहिदा हर शहरी को इस भरपूर तारीखी और फख्र से लबरेज अकदार की याद दिलाता है जब हिंदुस्तान का परचम मुजस्सम हुआ। जदीद हिंदुस्तानी परचम को पंगाली वेंकैया ने डिजाइन किया था, जो इब्तदाई इनकलाबी झंडों से दहाइयों के इर्तिका की अक्कासी करता है। बहरिये के नीले अशोक चक्र के साथ जाफरानी, सफेद और सब्ज रंग के बैंडों को सरकारी तौर पर 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। जाफरानी रंग हिम्मत और कुर्बानी को दर्शाता है, जबकि सफेद रंग अमन और सच्चाई को। सब्ज रंग ईमान और खुशहाली की अलामत मानी जाती है। 24 स्पोक व्हील जो रास्तबाजी और तरक्की की अलामत है अशोक चक्र के हैं। हिंदुस्तान के कौमी परचम का दिन इत्तेहाद, हुब्बुल वतनी और हिंदुस्तान के कौमी परचम के एहतराम पर जोर देता है। ये शहरियों, खासतौर पर नौजवानों को झंडे के मुनासिब आदाब, तिरंगे के तारीखी सफर और हिंदुस्तान की शिनाख्त की तश्कील में कौमी अलामतों की अहमियत के बारे में तालीम देने के एक मौके के तौर पर भी काम करता है। मजीद, आज कौमी आम का दिन यानी नेशनल मैंगो डे भी है। दुनिया के सबसे मशहूर फलों में से एक आम के लिए ये मुनासिब है कि एक दिन उसके लिए तमाम तर वक्फ हो, लिहाजा कौमी मैंगो डे 22 जुलाई को मनाया जाता है, जहां आम से भरपूर मोहब्बत के नज़ारे देखने को मिलते हैं। आम सिर्फ एक फल नहीं है, बल्कि दुनिया के बहुत से ममालिक की सकाफत और तारीख का हिस्सा है। आम की काश्त पहली बार हिंदुस्तान में 5000 साल पहले हुई थी। वहाँ से आम का बीज 300 या 400 ईस्वी के लगभग मशरक़ी अफ्रीका और जनूबी अमरीका में अपना रास्ता बनाते हुए पूरे एशिया का सफ़र करता था। आज दुनिया के तकरीबन निसफ आम सिर्फ हिंदुस्तान में काश्त किए जाते हैं, जहाँ ये कौमी फल है। यहाँ तक कि दोस्ती के इशारे के तौर पर भी आम की टोकरी देना एक रिवायत बन गई है। जनूब मशरक़ी एशिया से लेकर कैरेबियन तक, जनूबी अमरीका और उससे आगे आम को मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल किया जाता है। दुनिया भर में आम की हज़ारों अकसाम हैं और इसीलिए नेशनल मैंगो डे हर साल 22 जुलाई को फलों के राजा के एजाज में मनाया जाता है। हिंदुस्तान में 5000

साल से ज्यादा अरसे से काश्त किए जाने वाले इस फल को अपनी भरपूर तारीखी सकाफती अहमियत और आला विटामिन सी जैसे गजाई फवायद के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों, ये थी आईने में शामिल खबरें। प्रोग्राम के अगले मरहले में समाप्त कीजिए ख्वातीन की ख्वाहिशें में योगा इंस्ट्रक्टर बनने की ख्वाहिश। सामिन, ख्वातीन की ख्वाहिशें आसमान की बुलंदियों से गुफ्तगू कर रही हैं। ऐसे में हमारे माशरे में ऐसे अफराद भी हैं जिनका दिन योगा करने, कराने और सीखने में गुजरता है। ऐसी ही खातून जैनब भी हैं जिन्होंने अपने मकसद की तकमील की खातिर अपनी जिंदगी वक्फ कर दी है, यानी योगा इंस्ट्रक्टर बनने की ख्वाहिश ने उन्हें आज एक इंस्ट्रक्टर बना दिया है। उनके मुताबिक योगा ने गुज़िश्ता 3 दहाइयों के दौरान तहकीक का एक बड़ा ज़खीरा जमा किया है जिसने इसे खालिस्तन फलसफियाना अमल से निकाल कर एक तिब्बी तौर पर जांचे गए नज़्म व ज़ब्त में तब्दील कर दिया है। ये तहकीक मुसलसल जो कुछ जाहिर करती है वो ये है कि योगा महज हल्की वर्जिश की एक शक्ल नहीं, ये जिस्मानी पोज, सांस लेने की तकनीकें और मुराकबा की तवज्जो है और इनका मिलाप आसाबी, एंडोक्राइन, कल्बी और मरकजी आसाबी निज़ामों में तब्दीलियां पैदा करता है। योगा लचक और नकल व हरकत को नुमाया तौर पर बढ़ाता है जिससे पट्ठों और जोड़ों को ज़्यादा आज़ादाना तौर पर हरकत करने में मदद मिलती है। मुस्तकिल मश्क हिपो कैंपल मनफी फीडबैक को मजबूत बनाकर HPA महवर को दोबारा तरतीब देती है जिससे दायमी कॉर्टिसोल की पैदावार कम होती है। बढ़ा हुआ विगल टोन मैक्रोफेज साइटोकाइनिन की पैदावार को दबाता है जो दायमी सोजिश का बायस बनता है। ये मश्क नींद के बेहतर मेयार का बायस बन सकती है और दर्द के इंतजाम के लिए मौसर हिकमत अमली फ्राहम करती है। योगा को जिस्म पर उसके मुस्बत असरात की वजह से बड़े पैमाने पर तस्लीम किया जाता है। इस मश्क में जिस्मानी पोजीशन, सांस लेने की तकनीक और मुराकबा का मजमुआ शामिल है जो मिलकर जिस्मानी सेहत में नुमाया बेहतरी का बायस बनता है। लचक और नकलो हरकत में अजाफा योगा के सबसे आम फवायद में से एक है। मुख्तलिफ पोजीशंस या आसन मुनज़्ज़म तरीके से पट्ठों और जोड़ने वाले टिश्यूज को खींचते हैं। वक्त के साथ साथ ये बाकायदा खिंचाव पट्ठों को लंबा करने और जोड़ों की नकलो हरकत को बढ़ाने में मदद कर सकता है। ये ख़ास तौर पर उम्र बढ़ने के साथ मददगार साबित हो सकता है क्योंकि लचक अक्सर वक्त के साथ कम हो जाती है। मुतालियात से पता चलता है कि मुसलसल योगा की मश्क न सिर्फ लचक के नुकसान को सुस्त कर सकती है बल्कि बड़ी उम्र के बालिगों में इसे बेहतर भी कर सकती है। योगा इंस्ट्रक्टर बनना एक बेहतरीन फैसला है जो सेहत, तंदुरुस्ती और ज़हनी सुकून को फ़रोग देने में मदद करता है। इस सफ़र को कामयाबी से मुकम्मल करने के लिए बाकायदा तरबियत और सर्टिफिकेशन हासिल करना ज़रूरी है ताकि आप पेशावराना तौर पर दूसरों की रहनुमाई कर सकें। योगा इंस्ट्रक्टर बनने के लिए बुनियादी ट्रेनिंग और मश्क कम से कम 2 साल तक खुद बाकायदगी से करनी पड़ती है ताकि योगा की बुनियादी तकनीक और अपने जिस्म की सलाहियतों को समझने में मदद मिले। इसके अलावा सर्टिफिकेशन कोर्स के साथ पढ़ाने का तजुर्बा अपने दोस्तों, ख़ानदान वालों या करीबी कम्युनिटी सेंटर्स में मुफ्त क्लासेस लेकर तजुर्बा भी हासिल किया सकता है। इससे इंसान का एतमाद बढ़ता है और बात करने का अंदाज़ बेहतर होता है। क्लाइंट्स की तलाश और मार्केटिंग के लिए आपको स्टूडियोज़ में जॉब के लिए दरख्वास्त देनी होगी और जिम ज्वाइन करना होगा। तो दोस्तों, ये था ख्वातीन की ख्वाहिशें का सेगमेंट।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात। मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी।

अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात। मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

मीडियम वेव 297.6 मीटर यानी 1008 किलो हर्ट्ज पर यह है आकाशवाणी कोलकाता का चैनल संचेता। आप सुन रहे हैं रोजाना उर्दू प्रोग्राम अंजुमन अपनी मेजबान सादिया के साथ। और अब वक्त हो गया है हफ्तावार सेगमेंट गरसास छेड़ा का, जिसमें आज हम आपको सुनवाएंगे बॉलीवुड के मशहूर नगमे इश्क के मौजू पर। इस सिलसिले में समाप्त करें पहला नगमा, जिसे लिखा है साहिर लुधियानवी ने, मौसीकी दी है रोशन ने, फिल्म बहू बेगम से मोहम्मद रफ़ी और मन्ना डे की खूबसूरत आवाज़ों में।

इश्क ही इश्क है जिधर देखो, सारे आलम में भर रहा है इश्क। इस शेर के साथ समाप्त करें शकील का लिखा नगमा, नौशाद की मौसीकी के साथ फिल्म मुगले आजम से लता मंगेशकर की खूबसूरत आवाज़ में।

मीडियम वेव 297.6 मीटर यानी 1008 किलोहर्ट्ज पर। यह है आकाशवाणी कोलकाता का चैनल संचेता। आप सुन रहे हैं रोजाना उर्दू प्रोग्राम अंजुमन के तहत हफ्तावार नगमों का मजवाती सेगमेंट गरसास छेड़ा, अपनी मेजबान सादिया के साथ। होश वालों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज है, होश वालों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज है, इश्क कीजिए फिर समझिए जिंदगी क्या चीज है। निदा के इस शेर के साथ समाप्त करें अगली पेशकश। शकील का लिखा नगमा, रवि की मौसीकी के साथ, फिल्म उम्मीद से मोहम्मद रफी की दिलकश आवाज़।

मकतबे इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी न मिली जिसको सबक याद रहे। समाप्त करें अगली पेशकश आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में फिल्म नागिन से। इस नगमे को लिखा है वर्मा मलिक ने, मौसीकी दी है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने।

मीडियम वेव 297.6 मीटर यानी 1008 किलोहर्ट्ज़ पर यह है आकाशवाणी कोलकाता का चैनल संचेता। आप सुन रहे हैं रोजाना उर्दू प्रोग्राम अंजुमन के तहत हफ्तावार नगमों का मौजूआती प्रोग्राम गरसाज छेड़ा अपनी मेजबान सादिया के साथ। समाप्त करें अगली पेशकश बाबुल सुप्रियो की आवाज में अलका याग्निक के साथ फिल्म वादा से। नगमा निगार हैं समीर, मौसीकार हैं हिमेश रेशमिया। इस शेर के साथ के तिरेश की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ।

0: मीडियम वेव 297.6 मीटर यानी 1008 किलोहर्ट्ज पर यह है आकाशवाणी कोलकाता का चैनल संचेता। आप सुन रहे हैं रोजाना उर्दू प्रोग्राम अंजुमन अपनी मेजबान सादिया के साथ। वक्त हो गया है आज के प्रोग्राम की आखिरी पेशकश का। समाप्त करें आज के प्रोग्राम की आखिरी पेशकश उदित नारायण, सुखविंदर सिंह, आशा भोसले, सुनिधि चौहान की आवाजों में फिल्म यादें से। इस नगमे को लिखा है आनंद बख्शी ने, मौसीकी दी है अनु मलिक ने। इस शेर के साथ के ये इश्क नहीं आसा इतना ही समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। सुनते रहिए इस नगमे को। इजाजत दे अपनी मेजबान सादिया सदफ को। आपसे फिर मुलाकात होगी। सुबह खैर। सुनते रहिए आकाशवाणी कोलकाता का चैनल संचेता।
1: जब दिल मिले मिले मिले दिल मिले, तब गुल खिले खिले खिले गुल खिले। जब दिल मिले तब गुल खिले। जब...

मीडियम वेव 297.6 मीटर यानी 1008 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी कोलकाता का संचेता चैनल है। दोपहर के 12:40 आपकी दोस्त सविता सभी दोस्तों का स्वागत करती है कार्यक्रम सुरभि में। सुरभि में चर्चा है, मैं आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम। चर्चा है कि आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय ध्वज दिवस की। प्रत्येक वर्ष 22 जुलाई को मनाया जाता है राष्ट्रीय ध्वज दिवस। वर्ष 1947 में इसी तिथि को संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को औपचारिक रूप से स्वीकृत किया गया था। भारत का राष्ट्रीय ध्वज एक आयताकार तिरंगा ध्वज है। इसमें 3 क्षैतिज रंगीन पट्टियां हैं जो ऊपर से नीचे इस प्रकार हैं। केसरिया रंग ऊपरी पट्टी साहस बलिदान और त्याग का प्रतीक है। सफ़ेद रंग मध्य पट्टी यह शांति सच्चाई और ईमानदारी का प्रतीक है। हरा रंग निचली पट्टी यह भारत की उर्वरता हरियाली और समृद्धि को दर्शाता है। मध्य में सफ़ेद पट्टी पर गहरे नीले रंग से बना हुआ एक 24 तीलियों वाला अशोक चक्र है जो सम्राट अशोक के सारनाथ स्थित सिंह स्तंभ से लिया गया है। यह चक्र न्याय धर्म और प्रगति का प्रतीक माना जाता है। ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा की बैठक में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिसमें स्वतंत्र भारत के लिए एक राष्ट्रीय ध्वज को अपनाने की सिफारिश की गई। यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह ध्वज किसी धर्म संप्रदाय का नहीं बल्कि समूचे भारत का प्रतीक होगा। चर्चा है, मैं आज हमने चर्चा की राष्ट्रीय ध्वज दिवस की। दोस्तों आइए चर्चा करते हैं राष्ट्रीय आम दिवस की। आज के दिन राष्ट्रीय आम दिवस भी मनाया जाता है। यह आम दिवस का जश्न मनाया गया दुनिया का सबसे लोकप्रिय फूलों में से एक होने वाले दिवस में से है और यह आम के लिए एक समर्पित दिन है। 22 जुलाई को यह दिन मनाया जाता है। एक वैश्विक फल आम मजहब एक फल नहीं है बल्कि यह दुनिया भर के कई देशों की संस्कृति और इतिहास का सिद्धांत है। आम की खेती सबसे पहले 5000 साल पहले भारत में शुरू हुई थी। वहाँ से आम का बीज पूरे एशिया में और लगभग 300 या 400 ईस्वी पूर्व मध्य पूर्व पूर्वी अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका तक पहुँचा। आज दुनिया भर में लगभग सभी जानवर अकेले भारत में ही आज सभी तरह की किस्में भारत में ही उगती हैं। यह राष्ट्रीय फल है जहाँ पर कि दक्षिण पूर्व एशिया से लेकर कैरेबियन दक्षिण अमेरिका और इसके आगे तक आम का उपयोग कई तरह से किया जाता है। विश्व भर में आम की हज़ारों खूबसूरत किस्में पाई जाती हैं लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका में 6 ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अपने स्थानीय बाज़ारों में आसानी से मिलेगी। समृद्ध कलाकारों को देखते हुए विभिन्न मसालों को चखने और उनके स्वाद का अनुभव करने का यह एक बेहतरीन समय है। 1300 से अधिक प्रकार की शैलियों के साथ हम जानते हैं कि आम में विभिन्न प्रकार की शैलियाँ कैसे शामिल की जाती हैं। स्वाद से लेकर विश्वास तक हम हर तरह के भोजन में इसे पाते हैं। संस्कृत कवि कालिदास ने अपनी महान कृति शकुंतला में आम की बहुत प्रशंसा करते हुए लिखा है कि आम की पहली टहनी इतनी गुलाबी इतनी हरी, बसंत की पहली जीवनदायिनी सांस। आम को सबसे पहले आम्रफल कहा जाता था। प्रारंभिक वैदिक साहित्य में इसे रसाला और सहकारा भी कहा गया है जिसका उल्लेख बृहदारण्यक उपनिषद और पुराणों में भी मिलता है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में आम को प्रेम उर्वरता और समृद्धि का प्रतीक बताया गया है। आम का वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका है। आम की प्रजाति को मैंगीफेरा कहा जाता है। भारत में आम को वर्ष 1950 में राष्ट्रीय फल के रूप में अपनाया गया। यह पाकिस्तान और फिलीपींस का भी राष्ट्रीय फल है। आश्चर्यजनक रूप से भारत में ही इसकी 1500 किस्में उगाई जाती हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक विभिन्न राज्यों में जलवायु परिस्थिति के अनुसार आम की अलग अलग प्रजातियां पाई जाती हैं। भारत विश्व का सबसे बड़ा आम उत्पादक देश है। किसान यहां आम की अनेक किस्में उगाते हैं। यहां लगभग 180 लाख टन आम का उत्पादन होता है। इसमें से हजारों टन आम विदेशों में निर्यात किए जाते हैं। इतना ही नहीं, विश्व भर में आम के कुल

उत्पादन में भारत का योगदान लगभग 57.18% है। धूप और पर्याप्त वर्षा मिलकर आमों के लिए अनुकूल वातावरण बनाते हैं। तो दोस्तों, आज हमने बात की, चर्चा है मैं राष्ट्रीय आम दिवस की भी। ये आकाशवाणी कोलकाता का संचेता चैनल है, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरभि। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए अगले पायदान पर प्रस्तुत है पहल। पहल कार्यक्रम में आज हम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के विषय में चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का निर्माण इसलिए किया गया ताकि, जैसा कि सभी जानते हैं, कि सूखा पड़ जाने के पर, बाढ़ आने पर किसानों की फसलें बर्बाद हो जाती हैं। साहूकारों और बैंकों से लिए गए लोन देने में उन्हें दिक्कत आती है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। किसान भाई, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो कि लागू की गई है, इसका लाभ उठा सकेंगे। इस योजना के अंतर्गत वह केंद्र सरकार 8,800 करोड़ रुपए खर्च करना करके योजना बनाई है। पीएम फसल बीमा योजना पॉलिसी के अंतर्गत किसानों को खरीफ फसल 2% के लिए, रबी फसल के लिए 1.5% भुगतान करते हैं, जिसके पश्चात प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखे, बाढ़ की वजह से फसल के होने वाले नुकसान और आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। फसल बीमा योजना के लिए जो पात्रता है, उसके लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अपनी ज़मीन का ही नहीं बल्कि भाड़े पर ली हुई फसलों का बीमा करवा सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2018 का लाभ केवल बिना लोन वाले व्यक्ति ही प्राप्त कर सकते हैं। सरकार ने इसके लिए किसी खास क्राइटेरिया का निर्माण नहीं किया है। सरकार इस योजना से ज़्यादा किसानों को जोड़ना चाहती है, इसलिए इस योजना को बहुत सरल बनाया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ है कि किसानों द्वारा अपनी फसलों का जो करा रहे बीमा का लाभ उन्हें इस प्रकार प्राप्त होगा कि इस योजना से कोई भी छोटे बड़े किसान आवेदन कर सकते हैं और प्राकृतिक आपदाओं के समय होने वाली फसलों के नुकसान की भरपाई प्राप्त कर सकते हैं। सरकार ने इस योजना से ज़्यादा किसानों को जोड़ा है, इसलिए वह इसे काफ़ी सरल बनाती है। साथ ही इसका प्रीमियम बहुत कम होता है। इसमें खरीफ फसल के लिए 2%, रबी की फसल के लिए 1.5%, की वाणिज्यिक फसल के लिए 5% प्रीमियम देना पड़ता है। फसल को नुकसान होने से फसल बीमा के अप्लाई करने वाले किसान के बैंक खाते में धनराशि प्रदान की जाती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों को टैक्स फ्री प्रदान किया जाता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में आवेदन करते समय किसान नॉमिनी भी रख सकते हैं। इसके लिए फसल बीमा योजना के लिए जरूरी कागजात आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, बैंक अकाउंट की जानकारी, किसान द्वारा फसल की बुवाई शुरू होने वाली तारीख के दिन की तारीख। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना फॉर्म ऑनलाइन भरने के लिए वेबसाइट पर क्लिक करिए। फसल बीमा योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको एक अकाउंट बनाना होगा। अकाउंट बनाने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा और पूछे जाने वाले सभी जानकारी सही ढंग से भरनी होगी। सभी जानकारी भरने के पश्चात आप सबमिट पर बटन करके क्लिक कर सकते हैं। इसके पश्चात अकाउंट ऑफिशियल वेबसाइट बन जाएगी। अकाउंट बनने के पश्चात अपने अकाउंट में लॉगिन करके आपको फसल बीमा योजना के लिए फॉर्म भरना होगा। फसल बीमा योजना का फॉर्म सही करने के पश्चात आपको सबमिट पर बटन क्लिक करना होगा। तो दोस्तों, इस तरह से फसल बीमा योजना का लाभ उठाया जा सकता है। अभी हमने पहल कार्यक्रम में फसल बीमा योजना की बात की। ये आकाशवाणी कोलकाता का संचेता चैनल है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरभि।

दोस्तों, चलते चलते आपके लिए एक और गीत, फिल्म बप्पी, आवाज़ें हैं बप्पी लहरी और सुलक्षणा पंडित की आवाज़ों में। और इसी गीत के, अंतिम गीत के साथ आपकी दोस्त सविता अब आपसे चाहेगी इजाज़त। यह है आकाशवाणी कोलकाता का संचेता चैनल, आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुरभि, मैं थी सविता। और आइए चलते चलते फिल्म चलते चलते से आपके लिए गीत

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा, पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते

0: वाली देश की पहली रेलगाड़ी के शुभारंभ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और वैज्ञानिकों, इंजीनियरों तथा तकनीशियनों को बधाई दी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि उपलब्धि पर्यावरण अनुकूल परिवहन और मानवता के हित में वैकल्पिक ऊर्जा के उपयोग की दिशा में भारत की प्रगति को और मजबूत करेगी। इसके बाद सभापति ने विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना मुद्दा उठाने की अनुमति दी। श्री खड़गे ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का मुद्दा उठाया, लेकिन विपक्ष और सत्ता पक्ष के हंगामे के कारण सदन को स्थगित कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा कल प्रधानमंत्री आवास के गेट के बाहर बिना अनुमति धरने पर बैठने की कड़ी निंदा की है। नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास की गरिमा को जानते हुए भी श्री गांधी ने गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया। भाजपा सांसद ने सुरक्षा प्रोटोकॉल के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा सर्वोपरि है। दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से 16 मेट्रो स्टेशन अगले आदेश तक बंद रहेंगे। इनमें लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। भारतीय नौसेना ने आज कर्नाटक के कारवार में आईएनएस कादंबा नौसेना बेस पर माही श्रेणी के दूसरे पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आईएनएस मालवन को बेड़े में शामिल कर लिया। आईएनएस मालवन 8 पनडुब्बी रोधी युद्धपोतों में से दूसरा युद्धपोत है। इसमें 80% से अधिक स्वदेशी उपकरण और तकनीक का उपयोग किया गया है। इस समारोह में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर एयर चीफ मार्शल ने आत्मनिर्भरता की दिशा में नौसेना के प्रयासों की सराहना की।
1: आत्मनिर्भर भारत जो हमने एक सपना देखा है, हम उसके बहुत करीब आई जा रहे हैं। बहुत जल्दी इंडियन नेवी ने ये सपना अपना लिया था, हम लोगों ने देर करी है बल्कि, बिकॉज वेरियस सेक्टर्स टेक डिफरेंट टाइम्स टू ग्रो एंड आई थिंक इन एज फार एज नेवल शिप बिल्डिंग इज कंसर्न, इंडिया हैज ऑलवेज हैड एन एज एंड वी हैव कैरीड आवर लेगेसी फॉरवर्ड एंड इन मेकिंग शिप्स। सो वेरी गुड प्रोग्रेस हैज बीन मेड इन आत्मनिर्भरता एज फार एज शिप बिल्डिंग इज कंसर्न।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज फिलीपींस के मनीला में आयोजित क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। एक संयुक्त वक्तव्य में भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। साथ ही आसियान की एकता और केंद्रीय भूमिका के लिए अपने अटूट समर्थन की पुष्टि की। बैठक के दौरान उन्होंने हिंद प्रशांत पर आसियान के दृष्टिकोण का समर्थन करने के लिए क्षेत्रीय चुनौतियों और अवसरों पर ध्यान केंद्रित किया। समुद्री और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों तथा आपात कार्रवाई जैसे विषयों पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। जम्मू कश्मीर में कटरा और त्रिकुटा पहाड़ियों में खराब मौसम के कारण आज लगातार चौथे दिन भी श्री माता वैष्णो देवी यात्रा स्थगित रही। तीर्थयात्रियों को यात्रा फिर शुरू होने के संबंध में आधिकारिक माध्यमों से जानकारी लेने की सलाह दी गई है। चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के आयुष शेट्टी ने आज पुरुष सिंगल्स में इंडोनेशिया के अलवी फरहान को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Abhishek Mukhopadhyay. Both houses of parliament have been adjourned till 2 p.m. forming opposition protests over various issues, including the NEET paper leak case. When the Lok Sabha reassembled after the first adjournment at 12 noon, the opposition was on the feet protesting on the paper leak issue. Speaker Om Birla urged the opposition to cooperate for smooth functioning of the House. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju said that the government is fully prepared for a discussion on the NEET paper leak issue. He stated that the government is ready for discussion since day one. The minister said any discussion in the House must be conducted under established rules and requires proper arrangements. He requested floor leaders

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में किसी भी नियम के तहत चर्चा के लिए तैयार। सरकार ने कहा, युवाओं के भविष्य की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। युद्धपोत INS मालवन भारतीय नौसेना में शामिल। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। गुजरात, मध्य महाराष्ट्र और गोवा के कुछ हिस्सों में अगले दो दिनों के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। और चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के आयुष शेट्टी ने इंडोनेशिया के अलवी फरहान को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार मॉनसून सत्र के पहले दिन से ही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस चर्चा के लिए नियमों का निर्धारण

0: किया जाना चाहिए। श्री रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट परीक्षा प्रश्न पत्र पर गहन चर्चा चाहती है। उन्होंने कहा कि बहस जितनी भी लंबी चले उतनी लंबी होनी चाहिए और यथाशीघ्र शुरू होनी चाहिए। श्री रिजिजू ने कहा कि सरकार ने विपक्षी दलों को इस मुद्दे पर खुली चर्चा के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन उन्होंने इस तरह की बाधाएं खड़ी की जिससे प्रतीत होता है कि वे संवाद में शामिल नहीं होना चाहते।
1: देखिए, जो ऑपोजिशन पार्टी बोलना चाहते वो तो बोलना ही है चर्चा के दौरान, हम मना नहीं कर सकते, लेकिन चर्चा को रोकने के लिए आप अगर कंडीशन डालेंगे तो इसका मतलब आप चर्चा नहीं चाहते हैं। हमने जब खुले दिल से ऑफर किए सरकार की ओर से कि हम चर्चा चाहते हैं, तो उसको व्यवधान डालने के लिए कोई कंडीशन ऐसा डालेंगे ताकि चर्चा ही ना हो, ये तो ठीक बात नहीं है।
0: केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास के पास विरोध प्रदर्शन करना विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के गैर जिम्मेदाराना व्यवहार को दर्शाता है।
2: संवैधानिक पद पे रह के संविधान की गरिमा को तार तार किया, उनका ये आचरण बहुत ही खतरनाक मंशा से वो भारत में दूसरे देशों का नकल करके यहाँ उपद्रव कराना चाहते हैं।
0: भाजपा सांसद डॉक्टर सतीश पूनिया ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन करके कांग्रेस पार्टी पर अराजकता फैलाने का आरोप लगाया। इस बीच कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि विद्यार्थियों का संघर्ष वास्तविक है और वे बदलाव की मांग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आज कहा कि केंद्र सरकार विद्यार्थियों के साथ है और देश के युवाओं के भविष्य की रक्षा करना उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने युवा नेतृत्व वाले विकास के मंत्र को विकसित भारत को मजबूत करने की नींव बनाया है।
3: आप सब जानते हैं कि नीट जैसा एग्जाम जिसमें 20 से 22 लाख कैंडिडेट्स अपीयर होते हैं उसकी तैयारी में 6 महीने लगते हैं, लेकिन मात्र 37 डेज में नीट का री एग्जामिनेशन किया गया और रिजल्ट भी मात्र 25 दिन में आप सभी के सामने ला खड़ा कर दिया गया। जो री एग्जामिनेशन हुई उसमें टेक्नोलॉजी को लेवरेज करा गया ताकि कहीं पर भी अगर किसी भी प्रकार का लूप होल हो उसको कर्ब किया जाए, उसको प्लग इन किया जाए।
0: सुश्री स्वराज ने बताया कि सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पेपर लीक के 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया और अब वे सभी जेल में हैं। उन्होंने कहा कि आरोपियों को जल्द से जल्द कड़ी सजा दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा कल प्रधानमंत्री आवास के गेट के बाहर बिना अनुमति धरने पर बैठने की कड़ी निंदा की है। नई दिल्ली में भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास की गरिमा को जानते हुए भी श्री गांधी ने गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया। भाजपा सांसद ने सुरक्षा प्रोटोकॉल के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा सर्वोपरि है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले और विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए और राज्यसभा दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। दोपहर 12 बजे पहले स्थगन के बाद जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्ष ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। अध्यक्ष ओम बिड़ला ने सदन के सुचारू संचालन के लिए विपक्ष से सहयोग करने का आग्रह किया। इससे पहले जब लोकसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू करने के लिए एकत्रित हुई तो अध्यक्ष ओम बिड़ला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नीट पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध का मुद्दा उठाया। श्री बिड़ला ने विपक्ष से सदन के संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने अपना विरोध जारी रखा। इस कारण लोकसभा को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का मामला उठाया। अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा कि सरकार इस मामले पर चर्चा के लिए तैयार है और चर्चा के समय को लेकर सभी को एकमत होना चाहिए। हंगामा जारी रहने पर श्री बिड़ला ने सदन को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया। राज्यसभा में भी यही स्थिति देखने को मिली। दोपहर 12 बजे पहले स्थगन के बाद जब सदन दोबारा शुरू हुआ तो विपक्ष ने नीट मामले पर फिर से नारेबाजी शुरू कर दी। उपसभापति हरिवंश ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि प्रश्न का

0: सवाल संसदीय कार्यवाही का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और ये सदस्यों का अधिकार है।
1: आजादी के 50 साल बाद सदन ने यह संकल्प लिया था कि किसी भी हालत में क्वेश्चन आवर और जीरो आवर चलाएंगे। ये मेंबर्स के आवर है। आपके प्रश्नों को के उत्तर तैयार करने में कितना श्रम जाता है और जनता का धन जाता है, आप इसकी कल्पना करिए। आपको प्रश्न पूछने का अवसर मिलता है, प्लीज अपनी सीट पर बैठिए और क्वेश्चन आवर चलने दीजिए।
0: बार बार अपील करने के बावजूद विपक्षी सदस्यों ने उपसभापति की सलाह पर ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण सदन को दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से 16 मेट्रो स्टेशन अगले आदेश तक बंद रहेंगे। इनमें लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय नौसेना ने आज कर्नाटक के कारवार INS कदंबा नौसेना बेस पर माही श्रेणी के दूसरे पनडुब्बी रोधी युद्धपोत INS मालवन को बेड़े में शामिल कर लिया। INS मालवन 8 पनडुब्बी रोधी युद्धपोतों में से दूसरा युद्धपोत है। इसमें 80% से अधिक स्वदेशी उपकरण और तकनीक का उपयोग किया गया है। इस समारोह में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर एयर चीफ मार्शल ने आत्मनिर्भरता की दिशा में नौसेना के प्रयासों की सराहना की।
2: आत्मनिर्भर भारत जो हमने एक सपना देखा है, हम उसके बहुत करीब आई जा रहे हैं। बहुत जल्दी इंडियन नेवी ने ये सपना अपना लिया था, हम लोगों ने देर करी है बल्कि, बिकॉज वेरियस सेक्टर्स टेक डिफरेंट टाइम्स टू ग्रो एंड आई थिंक इन एज फार एज नेवल शिप बिल्डिंग इज कंसर्न, इंडिया हैज ऑलवेज हैड एन एज एंड वी हैव कैरीड आवर लेगेसी फॉरवर्ड एंड इन मेकिंग शिप्स। सो वेरी गुड प्रोग्रेस हैज बीन मेड इन आत्मनिर्भरता एज फार एज शिप बिल्डिंग इज कंसर्न।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि IASV त्रिवेणी पर सवार होकर पहली बार सभी सेनाओं की महिला सदस्य समुद्री अभियान समुद्र प्रदक्षिणा ने न केवल पृथ्वी का चक्कर लगाया बल्कि इस असाधारण उपलब्धि से करोड़ों भारतीयों को गौरवान्वित भी किया। उन्होंने IASV त्रिवेणी को आत्मनिर्भर भारत और भारत के नवाचार, क्षमताओं और आत्मविश्वास का जीवंत उदाहरण बताया। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज फिलीपींस के मनीला में आयोजित क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। एक संयुक्त वक्तव्य में भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमरीका ने एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई, साथ ही आसियान की एकता और केंद्रीय भूमिका के लिए अपने अटूट समर्थन की पुष्टि की।
3: In this era of volatility and disruption,
4: उथल पुथल के इस दौर में आपूर्ति श्रृंखला पर सबसे अधिक दबाव दिख रहा है। ऊर्जा, भोजन और स्वास्थ्य सुरक्षा को अब हल्के में नहीं लिया जा सकता। इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करना बहुत जरूरी है। वर्ष 2026 को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष के तौर पर मनाया जाएगा। साथ ही भारत और आसियान दोनों ही अपने भविष्य को लेकर उम्मीद से भरे हैं, इसलिए चुनौतियों का सामना करते हुए भी हमें मौकों पर पूरी तरह ध्यान देना चाहिए।
3: इवन वाइल एड्रेसिंग चैलेंजेस।
0: बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। डॉ. जयशंकर ने कहा कि बैठक में भारतीय अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया। अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा है कि ईरान को हुर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण की अनुमति देना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और नौवहन की स्वतंत्रता के लिए एक बेहद खतरनाक कदम होगा। डॉ. जयशंकर ने आज फिलीपींस के मनीला में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और आसियान क्षेत्रीय मंच की बैठकों के दौरान फिलीपींस, रूस और सिंगापुर के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तरी मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में महत्वपूर्ण विस्तार का आह्वान किया है। उन्होंने दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी

0: और नवाचार पर आधारित दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने गुजरात, महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में कल तक मूसलाधार वर्षा और कुछ स्थानों पर तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और विदर्भ में अगले 2 से 3 दिनों तक तेज बारिश होगी। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर है। 16 जिलों में पानी भरा हुआ है। राज्य में बाढ़ में 21 और लोगों की मौत हो गई है, जिससे मृतकों की कुल संख्या 31 हो गई है।
1: आधिकारिक रिपोर्ट्स के अनुसार राज्य में 872 गांव अभी भी जलमग्न हैं और 5,64,000 से भी अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। 24,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि पानी में डूबी हुई है। कामरूप और कामरूप महानगर जिलों में भी बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, जहां 4,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। राज्य सरकार ने 71 राहत शिविर और 202 राहत वितरण केंद्र स्थापित किए हैं। इन शिविरों में 12,000 से अधिक लोगों को आश्रय दिया गया है, जबकि 1,00,000 से अधिक प्रभावित लोगों को राहत सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। NDRF, SDRF, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज तथा स्थानीय प्रशासन की टीमें बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और राहत कार्य में लगातार जुटी हुई है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: जम्मू कश्मीर में कटरा और त्रिकुटा पहाड़ियों में खराब मौसम के कारण आज लगातार चौथे दिन भी श्री माता वैष्णो देवी यात्रा स्थगित रही। चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के आयुष शेट्टी ने आज पुरुष सिंगल्स में इंडोनेशिया के अलवी फरहान को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन भी आज अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज लगभग 1% की गिरावट दर्ज की गई। ताज़ा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 753 अंक गिरकर 76,717 पर और निफ्टी 202 अंक की गिरावट के साथ 23,986 पर पहुंच गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में किसी भी नियम के तहत चर्चा के लिए तैयार। सरकार ने कहा, युवाओं के भविष्य की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। युद्धपोत INS मालवन भारतीय नौसेना में शामिल। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्रों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। गुजरात, मध्य महाराष्ट्र और गोवा के कुछ हिस्सों में अगले 2 दिनों के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी कोलकाता अनुष्ठान सुनछेन संचयिता प्रचार तरंगे। अनुष्ठान प्रचारित होच्छे मीडियम वेवे 297.6 मीटारे अर्थात 1008 किलोहर्ट्ज़ে। शास्त्रीय संगीतेर अनुष्ठाने एखन शुनबेन शरद। शिल्पी सुरंजना दास। राग बृंदावनी सारंग। शिल्पीके तबलाय सहयोगिता करबेन नबारुण दत्ता।

0: আকাশবাণী কলকাতা, সঞ্চয়িতা প্রচার তরঙ্গের দ্বিতীয় অধিবেশন শুরু হল। স্টুডিওর ঘড়িতে এখন সময় বিকেল ৫টা। অনুষ্ঠান প্রচারিত হচ্ছে মিডিয়াম ওয়েভে 297.6 মিটারে, অর্থাৎ 1008 কিলোহার্টজে। এখন দিল্লি কেন্দ্র থেকে সংবাদ।
1: নমস্কার, আকাশবাণী সমাচার কে সাথ মে প্রশান্ত কুমার। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विरोध प्रदर्शन और अन्य मुद्दों पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में हंगामे के बीच सदन ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी को मानसून सत्र के शेष समय के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव पारित किया। पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद टेनेटी ने कहा कि कल्याण बनर्जी ने महिला सांसदों को निशाना बनाते हुए आपत्तिजनक और असंसदीय टिप्पणी। उन्होंने इस घटना को आपत्तिजनक और सदन की गरिमा तथा मर्यादा के विरुद्ध बताया। इससे पहले सुबह अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन के सुचारू संचालन के लिए विपक्ष से सहयोग करने का आग्रह किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है।
2: सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन और किस नियम के तहत होना है, माननीय स्पीकर महोदय सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए।
1: राज्यसभा में भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिली। सदन की कार्यवाही तीसरी बार स्थगन के बाद दोपहर में फिर शुरू हुई तो भी विपक्षी दलों ने विरोध प्रदर्शन किया। उपसभापति हरिवंश ने कहा कि सरकार नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को सदन चलाने में सहयोग करना चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में जारी विरोध प्रदर्शनों पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार युवाओं की भावनाओं और चिंताओं के प्रति संवेदनशील है।
3: यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश के छात्रों और नौजवानों को कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक राजनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार विद्यार्थियों और नौजवानों की आकांक्षाओं को पूरा करने और उनके कल्याण के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हमारे छात्रों की हर चिंता को सुनना, उसका समाधान करना, यह हम सबकी जिम्मेदारी है।
1: उधर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि छात्रों का संघर्ष वास्तविक है और वे बदलाव की मांग कर रहे हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को प्रदर्शनकारियों के संसद मार्च के दौरान कथित रूप से अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। न्यायालय ने अधिकारियों को सीसीटीवी फुटेज और वीडियोग्राफी सहित पुलिस कार्रवाई से संबंधित सभी प्रासंगिक रिकॉर्ड सुरक्षित

ने का निर्देश दिया। न्यायालय ने अधिकारियों को जवाब देने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 11 सितंबर को होगी। सरकार ने दिल्ली में विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान लोगों के मरने के सोशल मीडिया के दावे का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इन दावों को असत्य बताया है। दिल्ली पुलिस ने पुष्टि की है कि प्रदर्शन के दौरान किसी की मौत होने की कोई खबर नहीं है।

297 दशमलव 6 मीटर अर्थात 1008 किलोहर्ट्ज पर सुन रहे हैं आप कार्यक्रम आकाशवाणी कोलकाता के संचेता चैनल पे और 5:20 स्टूडियो की घड़ी में वक्त मैं सुचिश्मिता आप सबके साथ लेकर आ गई हूँ कार्यक्रम उर्वशी। उर्वशी के अंतर्गत आज हम बात करेंगे दिव्या कार्यक्रम में शांताला देवी के बारे में। बातों के जो सिलसिला है इसे जारी रखेंगे, साथ ही बताऊंगी शांताला देवी के बारे में, लेकिन सुनते हैं पहले कार्यक्रम का ये पहला गीत।

कार्यक्रम दिव्या, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका संचिता के इस कार्यक्रम में। मैं सुचिश्मिता और आज की इस प्रस्तुति में हम बात करेंगे, आपको मिलवाएंगे इतिहास की एक ऐसी महान शख्सियत से जिनका नाम कला, संस्कृति और समर्पण का पर्याय है। हम बात करेंगे होयसल साम्राज्य की महारानी शांताला देवी की। जी हाँ दोस्तों, 12वीं शताब्दी में दक्षिण भारत का होयसल साम्राज्य अपनी भव्य कला और मंदिरों के लिए प्रसिद्ध था। उस साम्राज्य के राजा विष्णुवर्धन की महारानी थी शांताला देवी। लेकिन उनकी पहचान सिर्फ एक रानी की नहीं थी, वो वही सीमित नहीं रही। वे एक अद्भुत नृत्यांगना, संगीत की पारखी और विदुषी और धर्मनिष्ठ महिला थीं।

5:31 स्टूडियो की घड़ी में वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं आप उर्वशी के अंतर्गत दिव्या मैं सुचिश्मिता आप सबके साथ बातें हो रही हैं महारानी शांतला देवी की उनकी पहचान की उनकी धर्मनिष्ठा की उनकी नृत्य के प्रति समर्पण की उनके गीत की उसके संगीत के पारखी नज़र की कहा जाता है भरतनाट्यम और शास्त्रीय नृत्य में उनकी ऐसी महारत थी कि जब वे नृत्य करती थी तो देखने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते थे उनके व्यक्तित्व में कला और आध्यात्मिकता का अद्भुत संगम था

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात। मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात। मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

हैं शांताला देवी की। शांताला देवी जैन धर्म की अनुयायी थी और उनके पति जो है वो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे और उन दोनों ने एक दूसरे की आस्था का हमेशा सम्मान किया। यह हमें धार्मिक संस्कृति का भी सम्मान और अपनी सम्मान का अनमोल संदेश देती है। इतिहास बताता है कि शांताला देवी ने अनेक मंदिरों और धार्मिक संस्थाओं को संरक्षण दिया। बेलूर के प्रसिद्ध चेनाकेश्वर मंदिर की कला और सांस्कृतिक परंपराओं में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। वे कलाकारों और विद्वानों का उत्साह बढ़ाती थी और राज्य में संस्कृति को नई ऊंचाई तक ले गई वो। रानी शांताला देवी का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची महानता केवल सत्ता में नहीं बल्कि अपने ज्ञान, कला, विनम्रता और सेवा की भाव में होता है। आज भी कर्नाटक के इतिहास में उनका नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। दोस्तों, इतिहास की ऐसी प्रेरक हस्तियों को याद करता हूँ इसलिए करना और इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि वे हमें बताते हैं, सिखाते हैं संस्कृति और संस्कार के किसी भी समाज में सबसे बड़ी ताकत होती है और उनसे जुड़कर हमें इन सब का भी ज्ञान होता है, हम भी मोटिवेट होते हैं।

0: जागृति शर्मा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विरोध प्रदर्शन और अन्य मुद्दों पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा में हंगामे के बीच सदन ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी को मॉनसून सत्र के शेष समय के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव पारित किया। पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद टेनेटी ने कहा कि कल्याण बनर्जी ने महिला सांसदों को निशाना बनाते हुए आपत्तिजनक और असंसदीय टिप्पणी की। इससे पहले सुबह अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन के सुचारू संचालन के लिए विपक्ष से सहयोग करने का आग्रह किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है।
1: सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है। मैं अनुरोध करता हूँ कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन और किस नियम के तहत होना है। माननीय स्पीकर महोदय, सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए।
0: उधर राज्यसभा में भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिली। सदन की कार्यवाही तीसरी बार स्थगन के बाद दोपहर में फिर शुरू हुई, तब भी विपक्षी दलों ने विरोध प्रदर्शन किया। उपसभापति हरिवंश ने कहा कि सरकार नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को सदन में चलाने में सहयोग करना चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में जारी विरोध प्रदर्शनों पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार युवाओं की भावनाओं और चिंताओं के प्रति संवेदनशील है।
2: यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश के छात्रों और नौजवानों को कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक राजनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार विद्यार्थियों और नौजवानों की आकांक्षाओं को पूरा करने और उनके कल्याण के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हमारे छात्रों की हर चिंता को सुनना, उसका समाधान करना, यह हम सबकी जिम्मेदारी है।
0: उधर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि छात्रों का संघर्ष वास्तविक है और वे बदलाव की मांग कर रहे हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को प्रदर्शनकारियों के संसद मार्च के दौरान कथित रूप से अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और दिल्ली पुलिस से चार सप्ताह में जवाब मांगा है। न्यायालय ने अधिकारियों को सीसीटीवी फुटेज और वीडियोग्राफी सहित पुलिस कार्रवाई से संबंधित सभी प्रासंगिक रिकॉर्ड सुरक्षित करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 11 सितंबर को होगी। सरकार ने दिल्ली में विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान लोगों के मरने के सोशल मीडिया के दावों का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इन दावों को असत्य बताया है। दिल्ली पुलिस ने पुष्टि की है कि प्रदर्शन के दौरान किसी की मौत होने की कोई खबर नहीं है। दिल्ली मेट्रो ने सुरक्षा स्थिति के कारण झंडेवालान मेट्रो स्टेशन भी बंद कर दिया है। इससे पहले 16 मेट्रो स्टेशनों को अगले आदेश तक बंद करने की घोषणा की गई थी। राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध है।

297 दशमलव 6 मीटर अर्थात 1008 किलो हर्ट्ज पर सुन रहे हैं आप आकाशवाणी कोलकाता का संचेता चैनल। आप इस कार्यक्रम को न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी सुन सकते हैं। मैं सुचिष्मिता आप सबके साथ। शाम के 6:10 हो रहे हैं स्टूडियो की घड़ी में वक्त, और वक्त है हिंदी वार्ता का।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे

कार्यक्रम हिंदी वार्ता, मैं सुचिश्मिता आप सबके साथ। और आज हम बात कर रहे हैं हिंदी वार्ता में नेशनल फ्लैग अडॉप्टेशन डे की, तिरंगे की कहानी। आज का दिन हर भारतीय के लिए बेहद खास, क्यों? क्योंकि आज 22 जुलाई का दिन इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज है। इस दिन 1947 में हमारी संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज को, यानी कि हमारे प्यारे तिरंगे को जो है, आधिकारिक रूप से अपनाया था। आज इसी ऐतिहासिक अवसर को राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस के रूप में याद किया जाता है।

बात करते हैं तिरंगे के रंगों की। सबसे ऊपर केसरिया रंग साहस, त्याग और बलिदान का प्रतीक है। बीच का सफेद रंग सत्य, शांति और ईमानदारी का संदेश देता है। नीचे का हरा रंग समृद्धि, विकास और प्रकृति से हमारे जुड़ाव का प्रतीक है। और बीच में बना गहरे नीले रंग का अशोक चक्र, जिसमें कई सारी जो है तिलियां हैं, हमें निरंतर आगे बढ़ते रहने का, कर्म करते रहने और न्याय के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है।

दोस्तों 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाने का प्रस्ताव रखा। सभा के सदस्यों ने जो है इस प्रस्ताव को पूरे उत्साह और सम्मान के साथ स्वीकार किया। यह वह पल था जिसने आजाद भारत की पहचान तय कर दी। उस समय भारत को स्वतंत्र होने के केवल कुछ ही दिन बाकी थे। हमारे राष्ट्रीय ध्वज का वर्तमान स्वरूप एक दिन में नहीं बना, इसके पीछे वर्षों का संघर्ष और कई बदलावों का इतिहास है। 1906 में पहली बार जो है झंडा कोलकाता में फहराया गया था, बाद में कई रूप सामने आए थे। वर्ष 1921 में स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वैकिया ने महात्मा गांधी के सामने एक ध्वज का प्ररूप प्रस्तुत किया था। इसके बाद 1931 में तिरंगे का एक नया स्वरूप स्वीकार किया गया जिसने आगे चलकर हमारे वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का आधार बनाया। अंततः 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने चरखे के स्थान पर अशोक चक्र के साथ वर्तमान तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया। हमारा राष्ट्रीय ध्वज सम्मान का प्रतीक है। प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि इसका सम्मान करें। आज भारत में हर नागरिक तिरंगा फहरा सकता है, लेकिन उसके सम्मान और गरिमा का पूरा ध्यान रखना आवश्यक है। ध्वज कभी भी जमीन पर नहीं गिरना चाहिए, उसका अपमान कभी नहीं होना चाहिए, उसका उपयोग ऐसे किसी कार्य में नहीं होना चाहिए जिससे उसकी गरिमा कम हो। दोस्तों, तिरंगा हमें केवल स्वतंत्रता की याद नहीं दिलाता, बल्कि यह भी सिखाता है कि देश एक की जो है एकता, अखंडता और सम्मान की रक्षा करना भी हम सभी की जिम्मेदारी है। जब भी आप तिरंगे को देखें, उन लाखों स्वतंत्रता सेनानियों को जो है याद करें जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी हमें आजादी दिलाने के लिए, इस तिरंगे का मान ऊंचा रखने के लिए। तो आइए दोस्तों, आज राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस पर हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हम अपने तिरंगे का हमेशा हमेशा सम्मान करेंगे, देश की एकता को मजबूत बनाए रखेंगे और एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर सामने आएंगे।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद

0: जी रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आज की वार्ता में हमने बात की नेशनल फ्लैग एडॉप्टेशन डे की। दोस्तों हमारा तिरंगा सिर्फ 3 रंगों का कपड़ा नहीं बल्कि देश की आत्मा का प्रतीक है और इसी संदेश के साथ आज की वार्ता से मैं कहूंगी आप सबको टाटा एंड बाय बाय। सुनते रहिए, साथ रहिए। एक बार फिर हाजिर रहूंगी आप सबके साथ लेकर कार्यक्रम गुलगुलशन ठीक 6:30 पे।

0: एकाम उच्च स्तरीय चर्चा इच्छति।
1: सरकार नी पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है। मैं अनुरोध करता हूँ कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन और किस नियम के तहत होना है। माननीय स्पीकर महोदय, सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए।
0: दिल्ली उच्च न्यायालयः सोमवासरे संसद भवनं प्रति गच्छत्सु प्रदर्शनकारिषु आरक्षकैः कृतायाः अत्यधिक बलप्रयोगस्य आशंकायाः प्रकरणे केन्द्रीय सर्वकारात् दिल्ली आरक्षक विभागाच्च प्रत्युत्तरं याचितवान्। मुख्य न्यायाधीशस्य डीके उपाध्यायस्य च तथा न्यायाधीशस्य तेजस कारिया महोदयस्य न्यायपीठेन आरक्षक कार्याचरणात् सम्बद्धानि सर्वाणि प्रपत्राणि सीसीटीवी चित्राणि च सुरक्षितानि स्थापयितुं निर्देशो प्रख्यापितः। अस्य प्रकरणस्य अग्रिमं श्रवणम् अस्मिन्नेव वर्षे सितंबर मासस्य एकादश दिनांके भविता। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अद्य फिलीपींस देशस्य राजधान्यां मनीलायां क्वाड विदेश मंत्रिणां सम्मेलने भागम अगृह्णात्। एकस्मिन् संयुक्त वक्तव्ये भारत जापान ऑस्ट्रेलिया अमेरिका देशाः मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्रस्य सुदृढीकरणाय सहैव आसियान संघस्य एकतायै स्वस्य अविचल समर्थनं पुनः प्रत्यपादयन्। उपवेशनावधौ तैः हिंद प्रशांत क्षेत्रमधिकृत्य आसियान संघस्य दृष्टिकोणस्य समर्थनार्थं क्षेत्रीय समाह्वानानां अवसराणां चापि तैः समीक्षा कृता। चर्चायाः प्रमुख विषयेषु तावत् सामुद्रिक सुरक्षा, अन्ताराष्ट्रिय सुरक्षा, आर्थिक समृद्धिः, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिक्यः, आपत् प्रतिक्रियाश्च समाविष्टाः आसन्। उपवेशनमतिरिच्य डॉक्टर जयशंकरः अमेरिका देशस्य विदेश मंत्रिणा मार्को रूबियो इत्यमुना साकं द्विपक्षीय वार्तां व्यदधात्। मंत्री प्रावोचत् यत् एषा वार्ता भारत अमेरिका देशयोः व्यापक वैश्विक सामरिक सहभागितायाः प्राथमिक विषयेषु व्यापार, शुल्क, ऊर्जा, रक्षा, सुरक्षा, खनिज कृत्रिम बुद्धिमत्तादिषु केन्द्रिता आसीत्। असमराज्ये जलप्लावन स्थितिः साम्प्रतमपि अत्यन्तं संकटापन्ना वर्तते। यत्र राज्यस्य षोडश मण्डलानि जलाप्लावेन प्रभावितानि सन्ति। कृत्स्नेहि राज्ये जलौघेन 21 जनाः पञ्चत्वे विलीनाः, येन अद्यावधि मृतकानाम् आहत्य संख्या 31 सम्प्राप्ता। आधिकारिक प्रतिवेदनानुगुणं 270+ ग्रामाः साम्प्रतमपि आप्लाविताः वर्तन्ते, येन अशेषस्य राज्यस्य 500,000+ जनाः प्रभाविताः अभवन्। राज्यसर्वकारेण 170 आपदुद्धार शिविराणि तथा 200+ आपद्वितरण केन्द्राणि समुद्घाटितानि, यैः 12,000+ जनेभ्यः आश्रयः, 100,000+ जलाप्लावितेभ्यः च साहाय्यं प्रदीयते। संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। दिल्ल्यां प्रचलद्भिः विरोध प्रदर्शनैः व्यथितः रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः न्यगादीत् यत् केन्द्रीय सर्वकारः छात्राणां भावोद्गारान् आशंकाः च प्रति अतीव संवेदनशीलो वर्तते। सर्वकारः छात्रैः उत्थापितस्य प्रतिप्रश्नस्य श्रवणाय, समाधानाय च पूर्णतया कटिबद्धो वर्तते। प्रसारमाध्यमान् सम्बोधयन् श्री सिंहः तीक्ष्णम् आक्षेपं व्यदधत्त यत् कतिपयजनाः स्वकीयान् संकुचित राजनैतिक स्वार्थान् साधयितुम् ऊर्जस्विनीं छात्रशक्तिं राजनैतिक कन्दुकत्वेन प्रयोक्तुं कुत्सितं प्रयासं कुर्वन्ति।
2: यह संसद का सत्र इस समय चल रहा है। सरकार ने हर मुद्दे पर सार्थक बहस करने की भी बात की है और कई बार अपनी बात को दोहराया भी है, मगर विपक्ष संसद में नहीं बल्कि सड़क पर मुद्दों का समाधान करने का, मैं मानता हूं, अनुचित प्रयास कर रहा है।
0: संसदि विपक्षेण कृताम् असंसदीय बाधाम् अधिकृत्य रक्षामन्त्रिणा स्पष्टीकृतं यत् सर्वकारः सर्वस्मिन्नपि ज्वलन्तविषये सारगर्भयुतां विचारचर्चां कर्तुं सदैव सन्नद्धो वर्तते। किन्तु विपक्षः समस्यानां समाधानं संसद्भवनस्य अपेक्षया मार्गेषु कर्तुम् अनुचितं प्रयासं करोति।

लोकसभायां रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव अवोचत यत आधुनिक प्रौद्योगिक्या आधारभूत संरचनया समुन्नत रक्षण कार्यैः च रेल सुरक्षा अतीव सुदृढ़ा विहिता। लोकसभायां लिखित उत्तराधारेण श्री वैष्णवेन प्रतिपादितं यत् सुरक्षा कार्याणां व्ययः 13,000+ वर्षे 13,000 कोटि रूप्यकेभ्यः संवर्ध्य 1,20,000 कोटि रूप्यतोप्यधिकं संजातम्। चीन ओपन बैडमिंटन प्रतिस्पर्धायां अद्यापराह्णे वारद्वयस्य ओलंपिक पदक विजेत्री पीवी सिंधुः स्वस्यैव देशस्य उन्नति हुड्डां 1:14, 9:21, 1:10 इत्यंकांतरालैः पराजित्य महिला एकल वर्गस्य राउंड ऑफ 32 स्पर्धां विजित्य द्वितीय चक्रं प्राविशत् इति वार्ताः।

97 दशमलव 6 मीटर अर्थात 1008 किलोहर्ट्ज पर सुन रहे हैं आप कार्यक्रम गुलगुलशन संचेता के चैनल पे। मैं सुचिश्मिता आप सबके साथ। आकाशवाणी कोलकाता के संचेता चैनल पे 6:30 बजे शाम के आप सुनेंगे कार्यक्रम गुलगुलशन और मैं आपको आप तक पहुंचाऊंगी कार्यक्रम का पहला गीत गजल।

6:38 स्टूडियो की घड़ी में वक्त। मैं सुचिश्मिता आप सबके साथ। वैसे दोस्तों, जिंदगी हर रोज एक नया इम्तिहान लेती है। गिरने वालों को फिर से उड़ान देती है। जो मुस्कुराहट के साथ सफर तय करते हैं, उन्हें रास्ते भी नई पहचान देती है।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी

कर सकते हैं, नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गुल गुलशन में सुचिश्मिता आप सबके साथ 6:55 स्टूडियो की घड़ी में वक्त।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
0: कार्यक्रम के आखिरी गजल के साथ छोड़े जाऊंगी आपको, सुनते रहिए साथ रहिए, थोड़ी ही देर में फिर हाजिर रहूंगी लेकर कार्यक्रम दर्पण। तब तक के लिए दीजिए इजाजत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विरोध प्रदर्शन और अन्य मुद्दों पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा में हंगामे के बीच सदन ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी को मॉनसून सत्र के शेष समय के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव पारित किया। पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद टेनिटी ने कहा कि कल्याण बनर्जी ने महिला सांसदों को निशाना बनाते हुए आपत्तिजनक और असंसदीय टिप्पणी की। इससे पहले सुबह अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन के सुचारू संचालन के लिए विपक्ष से सहयोग करने का आग्रह किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है।
1: सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन और किस नियम के तहत होना है। माननीय स्पीकर महोदय, सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए।
0: राज्यसभा में भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिली। सदन की कार्यवाही तीसरी बार स्थगन के बाद दोपहर में फिर शुरू हुई तो भी विपक्षी दलों ने विरोध प्रदर्शन किया। उपसभापति हरिवंश ने कहा कि सरकार नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को सदन चलाने में सहयोग करना चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में जारी विरोध प्रदर्शनों पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार युवाओं की भावनाओं और चिंताओं के प्रति संवेदनशील है।
2: यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश के छात्रों और नौजवानों को कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक राजनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार विद्यार्थियों और नौजवानों की आकांक्षाओं को पूरा करने और उनके कल्याण के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हमारे छात्रों की हर चिंता को सुनना, उसका समाधान करना, यह हम सबकी जिम्मेदारी है।
0: उधर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि छात्रों का संघर्ष वास्तविक है और वो बदलाव की मांग कर रहे हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को प्रदर्शनकारियों के संसद मार्च के दौरान कथित रूप से अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और दिल्ली पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। न्यायालय ने अधिकारियों को सीसीटीवी फुटेज और वीडियोग्राफी सहित पुलिस कार्रवाई से संबंधित सभी प्रासंगिक रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 11 सितम्बर को होगी। सरकार ने दिल्ली में विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान लोगों के मरने के सोशल मीडिया के दावे का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इन दावों को असत्य बताया। दिल्ली पुलिस ने पुष्टि की है कि प्रदर्शन के दौरान किसी की मौत होने की कोई खबर नहीं है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सरकारी नीतियों का उद्देश्य बच्चों सहित सभी उपयोगकर्ताओं के लिए मुक्त, सुरक्षित, विश्वसनीय और उत्तरदायी इंटरनेट प्रदान करना है। लोकसभा में श्री वैष्णव ने कहा कि 2023 में लागू डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम डिजिटल व्यक्तिगत डेटा के उपयोग को विनियमित करने के लिए कानूनी ढांचा स्थापित करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तरी मैसेडोनिया में आज स्कोपिये शहर के संग्रहालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने कहा कि संघर्ष, असहिष्णुता और विभाजन से जूझ रही दुनिया में गांधी जी के संवाद, करुणा और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के आदर्श अत्यंत प्रासंगिक बने हुए हैं।

विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन और आसियान क्षेत्रीय मंच की बैठकों के दौरान कनाडा की विदेश मंत्री अनिता आनंद से मुलाकात की। डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है। चीन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और आयुष शेट्टी ने सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। महिला सिंगल्स

2976.8 किलो हर्ट्ज पर सुन रहे हैं आप आकाशवाणी कोलकाता का संचेता चैनल। मैं सुचिश्मिता आप सबके साथ। आप न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी सुन सकते हैं इस कार्यक्रम को। कार्यक्रम दर्पण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और दर्पण में सबसे पहले एक नज़र में आज हम बात करेंगे नेशनल फ्लैग डे और मैंगो डे की। तो दोस्तों आम के बारे में तो हम सब जानते हैं। मैंगो डे यानी आम का उत्सव। भारत में आम केवल एक फल नहीं बल्कि संस्कृति, स्वाद और परंपरा का हिस्सा है। दशहरी हो, लंगड़ा हो, अल्फांसो हो, हिमसागर हो, चौसा या फिर मालदा, अनेक प्रकार के आम अपनी अलग अलग मिठास और खुशबू लिए हम सबको जो है बेहद लुभाते हैं और दुनिया में भी प्रसिद्ध हैं। ये आम में जो है हमें विटामिन ए, विटामिन सी, फाइबर और कई पोषक तत्व मिलते हैं जो स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होते हैं। गर्मियों में आम से बने आम रस, मैंगो शेक, आइसक्रीम, अचार, चटनी, हर तरह के जो ये खाने की चीज़ें हैं रौनक बढ़ा देती है खाने की, है ना। और शायद यही वजह है कि आम को जो है भारत का राष्ट्रीय फल भी कहा जाता है। और अब बात करेंगे हम लोग नेशनल फ्लैग डे की। जी हाँ दोस्तों, आज हमें जो दो विषय हैं जो अपने अपने अंदाज में हमें गर्व और आनंद दोनों से भर देते हैं और इसका एहसास कराते हैं, नेशनल फ्लैग डे और मैंगो डे। बात करेंगे नेशनल फ्लैग डे की। हमारा राष्ट्रीय ध्वज केवल 3 रंगों का कपड़ा नहीं बल्कि भारत की आत्मा, स्वाभिमान और एकता का प्रतीक है। केसरिया रंग साहस और त्याग का संदेश देता है, सफेद रंग सत्य और शांति का, जबकि हरा रंग समृद्धि और विकास का प्रतीक है। बीच में बना गहरे नीले रंग का अशोक चक्र हमें निरंतर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देता है। नेशनल फ्लैग डे में हम याद दिलाता है कि तिरंगे का सम्मान करना केवल एक नागरिक का कर्तव्य नहीं बल्कि हमारे देश के प्रति हमारी जिम्मेदारी का परिचय भी है। जब भी तिरंगा लहराता है हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है। आइए अपने राष्ट्रीय ध्वज का सदैव सम्मान करेंगे और देश की एकता, अखंडता और गौरव को बनाए रखने में अपना योगदान देंगे। एक नजर में अभी यहीं तक सुनते हैं गीत।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे

एक नजर में वक्त है राही मतवाले का, दर्पण में अब वक्त है एक नजर के बाद राही मतवाले का, और 297.6 मीटर अर्थात 1008 किलोहर्ट्ज़ पर सुन रहे हैं आप इस कार्यक्रम को। दोस्तों कहते हैं मंजिल से ज्यादा खूबसूरत

व्रत सफल होता है। और जब सफर पहाड़ों की ओर हो तो जहाँ हवा में देवदार की खुशबू खुली हो, मंदिरों की घंटियाँ मन को शांत कर दे और हर मोड़ पर प्रकृति आपका स्वागत करे, तब यात्रा यादगार बन जाती है। आज की राही मतवाले में हम चलेंगे साथ में उत्तराखंड के चंपावत जिले के लोहाघाट में के समीप स्थित बनेश्वर महादेव धाम की ओर। तो दोस्तों, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और चलते हैं, शुरुआत करते हैं अपनी यात्रा की। कोलकाता से जो है दोस्तों यात्रा शुरू करने के लिए आप रेल पसंद करते हैं तो ये सबसे सुविधाजनक विकल्प ही है। आप ट्रेन से जा सकते हैं, इसके अलावा आप जो है एरोप्लेन से भी जा सकते हैं और जो है अगर आप चाहें तो बस से भी जा सकते हैं। बस से कैसे जाएंगे ये भी बता दूंगी आपको। भाई अगर आप ट्रेन से जा रहे हैं तो काठगोदाम या टनकपुर तक के लिए आपको ट्रेन मिल जाएगा। टनकपुर पहुंचने के बाद आपको टैक्सी लेनी पड़ेगी और इस यहां से लगभग 80 किलोमीटर की पहाड़ी यात्रा करते हुए आप लोहाघाट पहुंचेंगे। खूबसूरत पहाड़ों के बीच से निकलेंगे आप। अगर काठगोदाम उतरते हैं तो 175 किलोमीटर की मनमोहक यात्रा आपका इंतजार करेगी। रास्ते में घमावदार सड़कें, देवदार के जंगल और पहाड़ की गोद में बसे छोटे छोटे गांव आपका स्वागत करेंगे। अगर तो आप हवाई यात्रा करने वाले हैं तो श्रोताओं, कोलकाता से आप पतंगर पहुंच सकते हैं, जहां से आप सड़क मार्ग द्वारा चंपावत और फिर लोहाघाट पहुंच सकते हैं। अगर आप दिल्ली से यात्रा कर रहे हैं तो उत्तराखंड परिवहन की बसों से भी आप पहुंच सकते हैं। वहां कल्पना कीजिए, सड़क के दोनों ओर जो है ऊंचे ऊंचे चीड़ और देवदार के पेड़, हल्की ठंडी हवा, दूर पहाड़ों से बसे जो है, बीच छोटे छोटे घर और आम हर मोड़ पर प्रकृति जैसे कह रही हो स्वागत है आपका देवभूमि में। बनेश्वर महादेव धाम लोहाघाट से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये बनेश्वर महादेव मंदिर यहाँ केवल एक मंदिर नहीं, यहाँ प्रकृति और अध्यात्म का अद्भुत संगम है। मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही घंटियों की मधुर ध्वनि, धूप और अगरबत्ती की सुगंध चारों ओर फैल कर जाती है और जो है चारों ओर फैली हरियाली मन को अद्भुत शांति दे जाती है। यहाँ बैठकर कुछ पल आंख बंद कर लीजिएगा तो लगेगा कि सारा तनाव जैसे हवा में उड़ गया हो। दोस्तों, आजकल हम मोबाइल की स्क्रीन पर बहुत समय बिताते हैं, लेकिन अगर बनेश्वर जैसी जगह आपको याद दिलाती है असली स्क्रीन सेवर तो प्रकृति ही है, जिसे देखने के लिए किसी इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ती। बस चारों ओर जो है खूबसूरत नजारा और उसको आप फील कर सकते हैं। बनेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन के बाद आप आसपास की खूबसूरत जगहों का भी जो है सैर कर सकते हैं। सबसे पहले घूम लीजिए वहां लोहाघाट का सुंदर बाजार, इसके बाद चंपावत नगर जहां इतिहास और संस्कृति की जो है झलक मिलती है। यदि समय मिले, समय बचे तो मायावती आश्रम अवश्य जाइए, जहाँ शांत वातावरण स्वामी विवेकानंद की याद दिलाता है। और अगर प्रकृति प्रेम है तो एबट माउंट की वादियाँ आपका दिल जीत लेंगी। यात्रा तभी पूरे होगी जब वहाँ के लोकल फूड्स का जो है आप स्वाद लेंगे। तो कमाऊँ का पारंपरिक भोजन बेहद स्वादिष्ट और पौष्टिक होता है। अगर आपको चखना ही है तो बिल्कुल वहाँ आलू के गुटके बहुत बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। इसके अलावा कुमाऊनी रायता, पहाड़ों में गर्म चाय जिसका स्वाद आप कभी नहीं भूल पाएंगे। लोकल फूड बिल्कुल ट्राई करें। पहाड़ों में खाना थोड़ा ज़्यादा स्वादिष्ट क्यों लगता है, इसका भी वजह है क्योंकि वहाँ भूख और शुद्ध होती है। भूख भी ज़्यादा लगती है क्योंकि हवाएं भी शुद्ध होती है और खरीदारी करनी है तो वहाँ लोकल मार्केट्स में जाके आप खरीदारी भी कर सकते हैं। हाँ,
ये जो है, बल्कि आप ऐसा कर सकते हैं कि घूमने के लिए सबसे अच्छा वक्त जो है वो मार्च से जून का है। इस बीच

आ सकते हैं जब मौसम सुहावना रहता है। सितंबर से नवंबर तक आसमान बिल्कुल साफ रहता है, पहाड़ बेहद खूबसूरत दिखाई देते हैं। बरसात में यात्रा करते समय सावधानी जरूरी होती है। और साथ में अगर सुझाव मैं कुछ आपको दूं तो ये कि हल्के गर्म कपड़े भी साथ रखें अगर आप इस डेस्टिनेशन को जाना चाहते हैं, पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि पहाड़ों में मौसम कभी भी थोड़ा इधर उधर आगे पीछे हो सकता है। और जो है गर्म कपड़े इसलिए साथ में रखें ताकि अगर मौसम ठंड होता है तो आप उसे यूज़ कर सकें। इसके बाद जो है पहाड़ों में आरामदायक जूते पहनना बहुत ज़रूरी है। पानी की बोतल साथ रखें, प्लास्टिक का उपयोग जितना कम करें उतना बेहतर। प्रकृति को स्वच्छ रखें, स्वस्थ रखें और जो है खूबसूरत रखें। और दोस्तों इसी के साथ आज की राही मतवाली यहीं तक। यात्रा केवल हमें नई जगहों तक नहीं ले जाती दोस्तों, वे हमें हमारे भीतर तक झांकना सिखाती है। बनेश्वर महादेव की यह यात्रा हमें बताती है कि शांति किसी बाजार में नहीं मिलती, वो प्रकृति की गोद में होता है, आस्था के द्वार पर होता है, वहां हमारा इंतजार करता है। अगर आप भी शहर की भाग दौड़ से कुछ पल दूर जाना चाहते हैं, अपनी जिंदगी से कुछ पल लेकर चुरा कर जो है कहीं दूर पहुंच जाना चाहते हैं, तो अगर आप चाहें तो इस डेस्टिनेशन को, इस यात्रा को बिल्कुल कर सकते हैं। बनेश्वर महादेव धाम अवश्य जा सकते हैं। कार्यक्रम के आखिरी गीत के साथ छोड़ जाऊंगी आपको। सुनते रहिए, साथ रहिए और मिलूंगी ऐसे ही किसी कार्यक्रम में दोबारा। तब तक के लिए दीजिए सुचिश्मिता को इजाजत। सुनते रहिए, साथ रहिए।

क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस

0: कौन दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विकसित भारत का सपना जन आंदोलन में बदलना चाहिए और देश के युवाओं को इसकी नींव बनना चाहिए। सरकार संसद में नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार। युवाओं के विरोध प्रदर्शनों का राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने की आलोचना की। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित। विपक्ष ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। दिल्ली उच्च न्यायालय ने संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, बेहतर रेल सुरक्षा, बुनियादी ढांचे के रखरखाव और आधुनिक तकनीक के कारण रेल दुर्घटनाओं में भारी कमी आई है। मौसम विभाग ने कल गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की और चीन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और आयुष शेट्टी सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत का सपना जन आंदोलन में बदलना चाहिए और देश के युवाओं को इस परिकल्पना की नींव बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों का कल्याण सभी सुधारों के केंद्र में होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और संबद्ध क्षेत्रों में विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा के लिए सचिवों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने युवाओं में मादक पदार्थों के सेवन की गंभीर समस्या से निपटने के महत्व पर भी बल दिया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विरोध प्रदर्शन और अन्य मुद्दों पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा में हंगामे के बीच सदन ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी को मॉनसून सत्र के शेष समय के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव पारित किया। पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद टेनेटी ने कहा कि कल्याण बनर्जी ने महिला सांसदों को निशाना बनाते हुए आपत्तिजनक और असंसदीय टिप्पणी की।
2: आज श्री कल्याण बनर्जी ने हमारी महिला सांसदों के साथ असंसदीय भाषा एवं असंसदीय टिप्पणियां की है, जिसकी लिखित शिकायत माननीय अध्यक्ष जी को प्राप्त हुआ है। ये सदन की गरिमा के विरुद्ध है।
1: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है।
3: सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन और किस नियम के तहत होना है। माननीय स्पीकर महोदय, सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए।
1: राज्यसभा में भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिली। उपसभापति हरिवंश ने कहा कि सरकार नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को सदन चलाने में सहयोग करना चाहिए। सदन के नेता जेपी नड्डा ने विपक्ष के आचरण की कड़ी निंदा करते हुए इसे अत्यधिक गैर जिम्मेदाराना और लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध बताया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: मॉनसून सत्र के लगातार तीसरे दिन विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित होती रही। व्यवधान के कारण लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं हो सका। दोनों सदनों में प्रश्नकाल और शून्यकाल भी नहीं चल सका। सरकार की ओर से बार बार यह आश्वासन दिए जाने के बावजूद कि वह नीट पेपर लीक मामले से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष ने अपना विरोध जारी रखा। आज लोकसभा की कार्यवाही 3 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 4 बार स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि उन्होंने दोनों पक्षों के विचार सुने और सरकार खुले मन से चर्चा करने के लिए तैयार है। उन्होंने विपक्षी दलों से कार्यवाही बाधित करने के बजाय विस्तृत चर्चा में भाग लेने का आग्रह किया। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में जारी विरोध प्रदर्शनों पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार युवाओं की भावनाओं और चिंताओं के प्रति संवेदनशील है।
5: यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश के छात्रों और नौजवानों को कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक राजनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार विद्यार्थियों और नौजवानों की आकांक्षाओं को पूरा करने और उनके कल्याण के प्रति

0: पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हमारे छात्रों की हर चिंता को सुनना, उसका समाधान करना, यह हम सबकी जिम्मेदारी है।
1: उधर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि छात्रों का संघर्ष वास्तविक है और वे बदलाव की मांग कर रहे हैं।
2: हम एडजर्नमेंट मोशन मांग रहे हैं ताकि ठीक से डिस्कशन हो। आप 8 घंटे के लिए वंदे मातरम डिस्कस कर सकते हैं, तो आप लंबे समय के लिए ठीक ढंग से एडजर्नमेंट मोशन पे ये इशू भी डिस्कस कर सकते हैं।
1: सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कहा है कि सरकार से नीट परीक्षा लीक मामले पर युवा प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करने का आश्वासन मिलने पर वे अपना अनशन समाप्त कर देंगे। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह को लिखे पत्र में श्री वांगचुक ने कल रात अस्पताल में उनसे मिलने के लिए दोनों मंत्रियों का आभार व्यक्त किया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को प्रदर्शनकारियों के संसद मार्च के दौरान कथित रूप से अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और दिल्ली पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। न्यायालय ने अधिकारियों को सीसीटीवी फुटेज और वीडियोग्राफी सहित पुलिस कार्रवाई से संबंधित सभी प्रासंगिक रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। सरकार ने दिल्ली में विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान लोगों के मरने के सोशल मीडिया के दावों का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इन दावों को असत्य बताया है। दिल्ली पुलिस ने पुष्टि की है कि प्रदर्शन के दौरान किसी की मौत होने की कोई खबर नहीं है। दिल्ली मेट्रो नेटवर्क के सभी स्टेशन अब यात्रियों के लिए खुल गए हैं। इससे पहले दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सुरक्षा कारणों से 17 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि रेल सुरक्षा में सुधार, बुनियादी ढांचे के रखरखाव और आधुनिक तकनीकों के उपयोग से रेल दुर्घटनाओं में भारी कमी आई है। लोकसभा में आज एक लिखित प्रश्न के उत्तर में श्री वैष्णव ने कहा कि वर्ष 2014-15 में हुई 135 रेल घटनाओं की संख्या घटकर इस वित्त वर्ष में अब तक केवल 2 रह गई है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा संबंधी गतिविधियों पर व्यय 2013-14 में लगभग 39,000 करोड़ रूपये से बढ़कर 2026-27 में 1,20,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। पिछले 2 वर्षों में सरकार ने अश्लील सामग्री प्रदर्शित करने के आरोप में देश भर में 50 ओटीटी प्लेटफॉर्म को सार्वजनिक पहुंच से बाहर कर दिया है। लोकसभा में सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुर्गुन ने कहा कि सरकार शिकायतों के आधार पर ऐसे मध्यस्थों और ओटीटी प्लेटफॉर्म के खिलाफ नियमित रूप से कार्रवाई करती है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक में तोतापुरी आमों की खेती, प्रसंस्करण और विपणन प्रणाली में व्यापक सुधार के लिए विस्तृत निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश तीनों राज्यों में तोतापुरी आम उत्पादक किसानों की आय में लगातार हो रही गिरावट की शिकायतों के मद्देनजर जारी किए गए हैं। अयोध्या में आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की हुई बैठक में मंदिर प्रबंधन, दान प्रणाली, मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति, ट्रस्ट में रिक्त पद भरने और धार्मिक समिति के पुनर्गठन से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। ट्रस्ट ने कहा कि श्रद्धालुओं की आस्था पहले की तरह ही अडिग है और मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या स्थिर है। पश्चिम बंगाल सरकार ने 7वें वेतन आयोग का गठन कर दिया है। आयोग राज्य सरकार और सरकारी सहायता प्राप्त संगठनों के कर्मचारियों तथा पेंशनभोगियों के वेतन, भत्ते, पदोन्नति और पेंशन से संबंधित संशोधनों की सिफारिश करेगा। आयोग अगले 6 महीनों के भीतर राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। छत्तीसगढ़ में अब अग्निवीर सैनिकों को पुलिस विभाग में आरक्षक, वन विभाग में वनरक्षक और जेल विभाग में प्रहरी की सीधी भर्ती में 10% आरक्षण मिलेगा। इसका लाभ उन अग्निवीरों को मिलेगा जो 4 वर्ष की सेवा पूरी कर वैध सेवा प्रमाण पत्र के साथ सेवामुक्त हुए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। कल हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, झारखंड, कर्नाटक, ओडिशा और राजस्थान में भी तेज बारिश होने की संभावना है। वहीं असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा सहित पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में भी इसी तरह के मौसम की स्थिति बने रहने का अनुमान है। सिक्किम के नामची जिले के समरदुंग स्थित सुरंग में बचाव दल ने 8 और शव बरामद किए हैं। अब तक 13 शव

0: बरामद किए जा चुके हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: नामची जिले के NHPC की टनल के अंदर फंसे लोगों को बचाने के लिए आज तीसरे दिन भी रेस्क्यू दल काम कर रही है। कम विजिबिलिटी और मीथेन गैस के लीकेज के वजह से शवों को निकालना मुश्किल हो गया है। इस बीच सिक्किम सरकार ने मरने वालों के पार्थिव शरीर उनके परिवारों को सौंप दिए है। केंद्र सरकार के अलावा सिक्किम सरकार और NHPC ने मरने वालों के परिवारों को मुआवजा देने का ऐलान किया है। घटना के समय टनल के अंदर कम से कम 25 लोगों के फंसे होने की आशंका है। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
0: कश्मीर में आज अनंतनाग जिले के लाल चौक इलाके में आतंकी हमले में एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई। हमले के बाद सुरक्षा बलों का पूरे इलाके में तलाशी अभियान जारी है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मृतक पुलिसकर्मी को श्रद्धांजलि देते हुए दोषियों को सजा दिलाने का आश्वासन दिया है। भारतीय नौसेना ने कर्नाटक के कारवार में स्वदेशी रूप से निर्मित माहे श्रेणी का एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट INS मालवन को शामिल किया है। ये नौका जलमग्न निगरानी, पनडुब्बी रोधी युद्ध अभियानों और कम तीव्रता वाले समुद्री अभियानों के साथ साथ बारूदी सुरंगों को नष्ट करने की क्षमता से लैस है। 80% से अधिक स्वदेशी घटकों से निर्मित ये नौका आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को बल देती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तरी मैसेडोनिया में आज स्कोपिया शहर के संग्रहालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने कहा कि संघर्ष, असहिष्णुता और विभाजन से जूझ रही दुनिया में गांधी जी के संवाद, करुणा और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के आदर्श अत्यंत प्रासंगिक बने हुए हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन और आसियान क्षेत्रीय मंच की बैठकों के दौरान कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की। डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचावास्केज से मुलाकात की। श्री सोनोवाल ने कहा कि दोनों देश बेहतर भविष्य के लिए परस्पर संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। चीन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और आयुष शेट्टी ने सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने हमवतन उन्नति हुड्डा को हराया, वहीं आयुष शेट्टी ने इंडोनेशिया के अलवी फरहान को शिकस्त दी। इस बीच पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन का मुकाबला जापान के युशी तनाका से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक लक्ष्य सेन ने पहला गेम अपने नाम कर लिया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अमित गोयल।
2: बॉम्बे शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.9% के नुकसान से 715 अंक लुढ़ककर 76,755 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.8% की गिरावट से 191 अंक गिरकर 23,996 के स्तर पर बंद हुआ। NSE मिड कैप सूचकांक में 1% से अधिक और स्मॉल कैप सूचकांक में 1.5% से अधिक की गिरावट दर्ज हुई। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 33 पैसे के नुकसान से 96.57 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर रहा।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने आज राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को न्यायिक अधिकारियों की सेवा निवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 61 वर्ष करने पर विचार करने का निर्देश दिया। न्यायालय की पीठ ने पूरे देश में जिला न्यायिक अधिकारियों की सेवा निवृत्ति आयु को 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने की समान मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विकसित भारत का सपना जन आंदोलन में बदलना चाहिए और देश के युवाओं को इसकी नींव बनाना चाहिए। सरकार संसद में नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार। युवाओं के विरोध प्रदर्शनों का राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने की आलोचना की। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित। विपक्ष ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। दिल्ली उच्च न्यायालय ने संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा। मौसम विभाग ने कल गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The

0: चर्चा का विषय है।
1: ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है खाद्य प्रसंस्करण से उद्यमिता और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिल रहे प्रोत्साहन पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह और वरिष्ठ पत्रकार जगदीश उपासने। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
2: एक छोटा सा गाँव, एक साधारण रसोई और उसी रसोई से उठती एक बड़ी शुरुआत। जहां कभी सिर्फ घर के लिए अचार, पापड़ और मसाले बनते थे, आज

0: वहीं से निकल रहे हैं ब्रांड, रोजगार और आत्मनिर्भरता की नई कहानियां। खेत के एक कोने में उगाई गई धनिया जब एक अत्याधुनिक पैकेज्ड ब्रांड बनकर उभरती है, या फिर किसी छोटे से शहर की बेकरी जब एक नए भारत के निर्माण की मिसाल बनती है, तब जन्म लेती है असली जमीनी क्रांति। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना यानी PMFME स्कीम देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तस्वीर बदल रही है। एक ऐसी योजना जिसने न केवल 2 लाख से अधिक ऋण स्वीकृतियों का ऐतिहासिक आंकड़ा पार किया है, बल्कि देश के अनौपचारिक खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को औपचारिक पहचान दी है। 20,300 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश, 6 लाख से अधिक आजीविका के अवसर और 44% महिला उद्यमियों की हिस्सेदारी, ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये कहानी है उस भारत की जो वोकल फॉर लोकल को अपना मंत्र बनाकर आत्मनिर्भर भारत का निर्माण कर रहा है। आज की इस विशेष चर्चा में हम गहराई से समझेंगे कि कैसे ये योजना वित्तीय समावेशन, तकनीक, ब्रांडिंग और मार्केट लिंकेज के जरिए हमारे किसानों और स्थानीय उद्यमियों को रोजगार मांगने वाले से रोजगार देने वाला बना रही है। साथ ही हम खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र की भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार जगदीश उपासने और वरिष्ठ कृषि एवं आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ हरवीर सिंह जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार।
2: नमस्कार
0: जगदीश जी, आपके साथ शुरुआत करते हैं। ये जो योजना है, इसने एक बहुत बड़ा मील का पत्थर स्थापित किया है अनौपचारिक सूक्ष्म इकाइयों को औपचारिक अर्थव्यवस्था में लाकर, और लगभग 75,000 से अधिक इकाइयां अब उद्यमी पंजीकरण, FSS, AI और GST के दायरे में आ चुकी है। एक वरिष्ठ पत्रकार के रूप में आप इस फॉर्मलाइजेशन को केवल कर या विनियमन के चश्मे से अगर हटाकर व्यापक स्तर पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था की दीर्घकालिक विश्वसनीयता और क्रेडिट योग्यता के संदर्भ में देखें तो क्या समझते हैं आप?
1: देखिए, मुझे लगता है कि जो ये अनौपचारिक अर्थव्यवस्था है, जो बेसिकली गांव पर आधारित है या Tier 2 cities पर आधारित है या Tier 3 cities पर आधारित है, इस पर बहुत पहले ध्यान दिया जाना चाहिए था, लेकिन देर से ही सही, बिल्कुल सही ध्यान दिया गया है। और इसकी जो योजना बनी है वो इतनी मुकम्मल और इतनी परफेक्ट है कि आप किसी भी राज्य में चले जाए, आपको बाजार जिसमें आप अनाज के अलावा अपने घरेलू रसोई का जो सामान लेते हैं, इसके अलावा आप नाश्ते का सामान लेते हैं, वो सब प्रोडक्ट्स आपको लोकली मेड मिलेंगे। ये बहुत बड़ी बात है, और इसके कारण जो मल्टीनेशनल कंपनीज है जिन्होंने इस मार्केट पे एक तरह से कब्जा करके रखा था, उनके प्रोडक्ट्स को मार्केट में टिकने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है, उनको नई नई स्कीम लानी पड़ती है। हम देखते हैं कि बहुत छोटे स्तर पर, मतलब अगर आप कस्बाई स्तर पर चले जाए तो कस्बाई स्तर पर भी लोकली और मैन्युफैक्चर्ड, लोकली प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं। सिर्फ खाने पीने के पदार्थ ही नहीं, दूसरे भी पदार्थ आपको मिलते हैं। ये बहुत दिन से और बहुत वर्षों से ये बाजार डेवलप हो रहा था, मोदी सरकार ने पहली बार इसको फॉर्मली ध्यान दिया और इसके लिए एक अच्छी मजबूत योजना शुरू की। और ये जो अनौपचारिक अर्थव्यवस्था है, अगर आप जो औपचारिक अर्थव्यवस्था देखेंगे देश की, तो उससे करीब 1/4 तो होगी ही, अभी उसका आकलन नहीं हुआ है कि ये जो इनफॉर्मल इकोनॉमी है, जो बेसिकली रूरल बेस्ड है, ये कितने की है, कितने हजार करोड़ की, कितने बिलियन डॉलर्स की है, ये आकलन अभी किसी ने नहीं किया कि एक आध स्टडी इस पर है। लेकिन अगर आप पाएंगे तो इस समय देश भर में, और लोग लोकली वोकल फॉर लोकल का नारा मोदी जी सरकार ने ऐसे ही नहीं दिया है, इस जो डेवलपमेंट हो रहा है नीचे के लेवल पर उसको ध्यान में रखते हुए दिया है। आत्मनिर्भर भारत की भी जो अभियान चल रहा है जिसके अंतर्गत ये योजना है, उसको भी इस बात को ध्यान में रख के दिया गया है कि गांवों, कस्बों और Tier 2, Tier 3 cities में, यहाँ तक कि आप जो बड़े शहर हैं उनमें भी आप पाएंगे कि उन अलग अलग क्षेत्रों में उन क्षेत्रों के बने हुए प्रोडक्ट्स ही आपको मिलते हैं, चाहे खाने पीने के पदार्थ हो, चाहे आपके इस्तेमाल के पदार्थ हो, सौंदर्य प्रसाधन से लेकर तो खाने पीने की चीज, नाश्ते की चीज और मनोरंजन की चीजें, वो सब लोकली प्रोड्यूस हो रही है। इस इकोनॉमी को टैप करके इस योजना ने बड़ा और मदद पहुंचाई है उन सब उद्यमियों को जो अपने बल पर खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं।
0: जी हरवीर जी, योजना ने हाल ही में 2 लाख से अधिक क्रेडिट लिंक्ड स्वीकृतियों का आंकड़ा छुआ है और इसमें 20,300 करोड़ से अधिक का निवेश भी आकर्षित हुआ है, लेकिन हम सब जानते हैं कि भारत में माइक्रो फाइनेंस और बैंकिंग तंत्र में अंतिम मील तक क्रेडिट डिलीवरी एक बड़ी चुनौती रही है। आपसे समझना चाहेंगे कि इस योजना में ऐसा क्या अलग रहा जिसने बैंकिंग तंत्र के प्रति सूक्ष्म उद्यमियों का जो हिचकिचाहट का भाव है उसे तोड़ा। क्या बैंक अब सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण को कम

0: खतरे वाला क्षेत्र मानने लगे हैं?
1: एक तो ये अपने आप में हमारे सामने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जो खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र है उसमें हमारे लिए है। अभी करीब 30 लाख करोड़ से ज्यादा का ये एक इंडस्ट्री है देश में, और जो अगले 2 साल में मेरे ख्याल से करीब 45,000 करोड़ तक उसको पार कर जाएगा। अब ये जैसे अभी उपासना जी कह रहे थे कि हम बात कर रहे हैं फॉर्मलाइजेशन और इनफॉर्मल की, क्योंकि जो बड़ा फॉर्मल सेक्टर है, बड़ा कब्जा जो बड़े ब्रांड बड़े मार्केट एक्सेस उनके पास रहे हैं, और जबकि छोटे स्तर पर गांव गांव से थोड़ा आगे हम जाए जो छोटे कस्बे छोटे शहर, वहां पर तमाम सारे एंटरप्रेन्योर्स ने कोशिश की कि वो वैल्यू एडिशन में जो फूड प्रोडक्ट्स हैं उसमें जाए, एग्रीकल्चर के वैल्यू एडिशन में जाए। वैल्यू एडिशन है फूड प्रोसेसिंग, जिससे कि वो बेहतर उनके आय का जरिया बने और स्थानीय स्तर पर किफायती। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो एक बाधा आती है किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए वो होती है वित्तीय संसाधनों की, जो हम रिसोर्सेज जो है फाइनेंशियल उसकी बात करते हैं। जो छोटा एंटरप्रेन्योर है वो अगर उसके पास पूंजी नहीं है, और इसके पहले जब फॉर्मल सेक्टर की बात करेगा या बैंक्स को अप्रोच करेगा, उसका उसको प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहिए, तमाम सारे कोलेटरल चाहिए, फिर बैंक्स में इतना लंबा प्रोसेस है, उसको ये मिलना मुश्किल था और लोग आगे नहीं बढ़ पाए। जाहिर सी बात है कि इसका स्कीम को ही इसी काम के लिए तैयार किया गया कि जो माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स हैं जो कुछ लाख रुपए से अपना काम शुरू करना चाहते हैं वो किस तरीके से फॉर्मलाइज एंटरप्रेन्योर के रूप में और उनकी जो यूनिट है वो कैसे फॉर्मलाइज सेक्टर में जाए, जो गुणवत्ता के मानक है उनको पूरा करती हो, और साथ में उसके लिए मार्केट की जो लोकलाइज स्तर पर जो अपॉर्चुनिटी है उसको टैप करे। अब इस तरह की जो स्कीम जो बिना कोलेटरल के एक सीमित स्तर पर जो फाइनेंस मुहैया कराती है ऐसे जो एस्पिरेशनल एंटरप्रेन्योर्स हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि इनको कोई बहुत बड़ा जो तामझाम होता है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है, आपके पास असेट कितना है, आपकी इक्विटी कितनी है, फिर बैंक तय करेगा कि हम इसमें कितना डालेंगे और किस तरीके से वो असेस करेगा, उन सब झंझटों से मुक्त करते हुए इस तरह की स्कीम लाई गई, ताकि ये जो बेहतर संभावना का जो क्षेत्र है उसको कैसे बढ़ावा दिया जाए और स्थानीय स्तर पर, क्योंकि ये लगातार एक बात है, जब हम कहते हैं कि जो भारत बड़े शहरों में नहीं, महानगरों में नहीं, जो मेजर इंडस्ट्रीज में नहीं है, जो छोटे स्तर पर है, जो रूरल इंडिया जिसे हम कहें या हमारे जो सेमी अर्बन एरियाज हैं, वहां पे जो लोग एक तरीके से अपनी उद्यमशीलता के जरिए आगे बढ़ना चाहते हैं उनके पास ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी जिसको वो ठीक से आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। लेकिन जब उनके पास क्रेडिट की सुविधा दी गई, उनको टेक्नोलॉजी का नो हाउ, उनका जो हैंड होल्डिंग जिसे हम कहते हैं कि उनको बताया गया कि किस तरीके की तकनीक आपका जो उत्पाद है उसको तैयार करने में काम आएगी, किस तरीके की प्लांट और मशीनरी जो है इसमें जरूरत होती है, उसके लिए कैसे फाइनेंस मुहैया कराया जाएगा, और आप अपने उत्पाद को मार्केट में कैसे ले जा सकते हैं, मार्केट लिंकेज कैसे हो सकता है, क्योंकि जो छोटे एंटरप्रेन्योर है उसके सामने ये भी एक चैलेंज होता है कि जो मार्केटिंग का जो एक स्किल होती है उसके पास उतनी बेहतर नहीं होती जो बड़ी कंपनियों की जो मार्केटिंग के जो लोग हैं या उनके जो संसाधन है उनके पास जो रिसोर्सेज है वो होते हैं। तो उस चैलेंज को दूर करते हुए ये जो सारे स्टेप्स हैं फाइनेंस अवेलेबल कराने से लेकर के उसको ट्रेंड करने तक मार्केटिंग के स्तर, वो इस स्कीम की खास जो खूबी है। और जो हम देख रहे हैं कि भाई 2 लाख से ज्यादा सैंक्शंस इसमें हुए हैं, तो ये अपने आप में या 20,000 करोड़ से ज्यादा का इसमें निवेश हो चुका है, तो ये एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि ये जो पूरी की पूरी जो एक ये जो काम हो रहा है वो छोटे स्तर पर हो रहा है
0: जी।
1: और जो हमारी जो रूरल इकोनॉमी है क्योंकि वो प्रोड्यूस भी वहीं से आ रहा है, तो उसके जो उत्पादक हैं उनको अपने आसपास अपने उत्पादों के थोड़ा बेहतर कीमत देने का एक बाजार भी खड़ा हो रहा है, तो ये एक जो इकोसिस्टम बन रहा है, तो वो इकोसिस्टम जो है इनमें से बहुत सारे जो एंटरप्रेन्योर हैं वो फिर माइक्रो से स्मॉल में जा सकते हैं, फिर वो और बड़े हो सकते हैं और बड़े हुए हैं लोग इस तरीके के। उदाहरण जैसे 2 उदाहरण इस आर्टिकल की बात आपने जिक्र किया जिस तरह से छोटी जगहों पर इस तरीके की तमाम सारी जो कहानियां सामने आती हैं और उसी रास्ते चल के देश में कई बड़ी कंपनियां एस्टेब्लिश हुई है, तो ये जो अपॉर्चुनिटी है उसको एक्सप्लोइट करने का और लोगों को स्थानीय स्तर पर बेहतर रोजगार के साथ में उनके जो इकोनॉमी जो है उसको बड़ा करने का एक अच्छा एक तरीके से एक ये स्कीम बनी और उसका फायदा लोग उठा रहे हैं, उसके नतीजे आने वाले दिनों में हमें और ज्यादा देखने को मिलेंगे। जैसा मैंने कहा कि जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है वो काफी तेजी से ग्रो कर

0: हमारे देश में जिस तरह से लोगों की इकोनॉमी कंडीशन बदल रही है, उनके जो हाथ में अधिक पैसा आ रहा है तो वो प्रोसेस फूड की तरफ जा रहे हैं,
1: जी
0: और उनको फिर ये है कि जो सिर्फ बड़ी कंपनियां हैं उनकी तरफ न जाकर के जो स्थानीय स्तर पर उत्पाद उपलब्ध है वो उनके मार्केट जो है के रूप में सामने आ रहे हैं। कुल मिलाकर के अगर हम देखें हमारी जो जीडीपी का करीब 7%, 7% ये सेक्टर बन गया है, और एग्रीकल्चर का एक बड़ा हिस्सा इसके पास है। लेकिन अभी भी हमारे पास बहुत बड़ी गुंजाइश है, क्योंकि हमारा जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है, जो हमारे पास जिसकी जो एक संभाव्यता जिसको हम कहते हैं, उसका हमने बहुत छोटे स्तर का दोहन किया है। तो ऐसे एंटरप्रेन्योर्स जो है उनके लिए अपार संभावनाएं हैं आगे बढ़ने की।
1: हरवीर जी जिन कहानियों का जिक्र कर रहे थे, हम अपने श्रोताओं को बता दें कि पीएमएफएमई योजना के सबसे पहले जो लाभार्थी थे वो थे जमुना लाल पाटीदार, और उनका आवेदन इस योजना के तहत पहला आवेदन था जिसे स्वीकृत किया गया था। खाद्य प्रसंस्करण में कोई पृष्ठभूमि न रखने वाले 10वीं पास उद्यमी जमुना लाल पाटीदार को 10 लाख रुपए सरकार की तरफ से इस योजना से मिले। उन्होंने उसका निवेश धनिया प्रसंस्करण इकाई शुरू करने में किया। योजना के तहत उन्हें वित्त, मशीनरी और मार्गदर्शन प्राप्त हुआ और उनका विचार एक सफल उद्यम में बदल गया, और आज उनके पास 5 से ज्यादा लोग हैं जो उनके लिए काम करते हैं और उनका व्यापार बहुत तेजी से फल फूल रहा है। जमुना लाल पाटीदार की ये कहानी हम सबको बताती है कि अगर आपके पास कुछ करने का जज्बा है और आपके पास एक विजन है, एक सोच है, एक प्लान है, तो उस प्लान को आगे बढ़ाने में इस तरह की जो सरकारी योजनाएं हैं वो बहुत मददगार साबित हो रही हैं। जगदीश जी, अगर खाद्य प्रसंस्करण की बात को हम आगे बढ़ाएं तो एक बड़ी चुनौती ये आती है कि अगर हमें वित्तीय सहायता मिल भी जाए तो जो छोटे स्तर के जो स्टार्टअप शुरू करने वाले लोग हैं या जो गांव के दूर दराज के किसान हैं, गुणवत्ता नियंत्रण कैसे करें, शेल्फ लाइफ को कैसे बढ़ाया जाए, जो मॉडर्न डे की पैकेजिंग है और राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच बनाना, उनके लिए आज भी कहीं ना कहीं चैलेंजिंग होता है। क्या आप देखते हैं कि इस दिशा में किस तरह के परिवर्तन लाने की जरूरत है और कितना बदलाव पिछले एक दशक में आया है?
2: देखिए, ये चैलेंज तो है और ये चुनौती भी है उन सब छोटे उद्यमियों के लिए जो अपने घर से या अपने गांव से ऐसा उद्यम शुरू कर रहे हैं, कर चुके हैं। देखिए, हमारे यहाँ जो फल हैं और सब्जियां हैं इनके बहुत कम पदार्थ बनते हैं, 2 से 3% के लगभग इसका योगदान होता है फूड प्रोसेसिंग में। जबकि फूड प्रोसेसिंग भारत में और सनराइज सेक्टर बोला जाता है इकोनॉमी की भाषा में, और इसमें बहुत ज्यादा गुंजाइश है क्योंकि भारत जो है सबसे बड़ा कृषि उत्पाद करने वाला देश है, सबसे अधिक दूध उत्पाद करने वाला देश है, और हम जो है मतलब आप सोचिए कि फलों के बारे में, सब्जियों के बारे में भी भारत की जो रैंकिंग है वो वैश्विक रैंकिंग में ऊपर ही है। ये पूरा सेक्टर जो प्रोसेसिंग का सेक्टर है, हमारा खाने की वस्तुएं बनती हैं उसमें 32%, जैसा हरविंद सिंह ने बताया, बहुत बड़ा एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, जबकि बहुत चुनौती है। इसमें मैं 2-3 चीजें जरूर कहना चाहूंगा कि जो स्वयं सहायता समूह है जिनको आप हर राज्य में, और हर राज्य सरकार भी उनको अपनी तरफ से मदद दे रही है, आप किसी भी राज्य में चले जाए लोकल अखबार उठा के देखें तो हर दूसरे दिन कोई ना कोई एक सक्सेस स्टोरी आपको जरूर मिलती है। कोई एग्रीकल्चर में ग्रेजुएट अपने गांव में जाकर एग्रीकल्चर एक स्टार्टअप शुरू करता है और 200-500 किसानों को अपने साथ जोड़ता है, उनको नई टेक्निक सिखाता है। 3D प्रिंटिंग की जो टेक्नोलॉजी है आप छोटे शहरों तक पहुंच गई है और लोग उससे कर रहे हैं आपको, लेकिन उनको एक विशेषज्ञ सहायता की जरूरत जरूर है, उनको ब्रांडिंग ठीक से करने की जरूरत। अभी जो प्रोड्यूस वो तैयार करते हैं वो इतना ही होता है कि वो लोकली खप जाए, और इसका उद्देश्य भी मुझे यही होना चाहिए कि और जो प्रोडक्ट बाहर जाते हैं, जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं, फल और उसके जो प्रोसेस्ड हैं पदार्थ वो सारे, और जो आप मिलेट्स आ गए, मिलेट्स के कई पदार्थ बनकर एक्सपोर्ट हो रहे हैं। हमारा जो खाद्यान्न है उसकी क्वालिटी के बारे में, हमारा जो एक्सपोर्ट हो रहा है उसमें कहीं कोई एकाध कोई खेप वापस आती होगी, अदरवाइज वो सब मार्केट में खपता है। आप यूरोप में घूमकर आइए, आपको भारत के हजारों छोटे प्रोडक्ट्स मिलेंगे जो सीधे एक्सपोर्ट होते हैं, लोग अमेजोन पर उसको ऑर्डर करते हैं और लोग खरीदते हैं। तो इसका मतलब है कि इसमें इतना बड़ा, इसको सनराइज सेक्टर ऐसे ही नहीं कहते, इसमें इतना ज्यादा स्कोप है कि ये हमारी फॉर्मल इकोनॉमी के आधे के करीब पहुंच सकता है। इसी समय उसका जो आकार है वो बहुत बड़ा आकार है। उनको जरूरत किस बात की कि जो राज्य स्तर पर जो योजनाएं चलाई जा रही है, स्वयं सहायता समूह वर्षों से काम कर रहे हैं, और जिन राज्यों में वो सफल हुए हैं वो आप जैसे यूपी

0: यूपी में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उत्पादित होने वाले प्रोडक्ट्स को और प्रधानता दी जाती है। स्वयं सहायता समूह को कहा जाता है कि इनको आप बनाइए, इनको हम प्रमोट करेंगे, मार्केट से लिंक करेंगे और आपको फिनेंशियल सपोर्ट देंगे, टेक्निकल सपोर्ट भी देंगे। ये हो रहा है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में भी ऐसी योजनाएं हो रही है, हिंदी भाषी राज्यों में, दक्षिण में भी ऐसी कई योजनाएं चल रही हैं। अगर स्टेट गवर्नमेंट्स इसको सीरियसली लेती है, ये केंद्र की योजना बहुत अच्छी योजना है, ये मैं समझता हूँ कि जो सहायता राज्यों से मिल रही है उसके ऊपर है। अब 4 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को इस योजना का लाभ मिला और 75,000 से ज्यादा प्रोडक्ट अगर इसमें लिस्टेड हुए जीएसटी में, FSSAI में, तो ये बहुत बड़ी बात है। इसमें जो टेक्निकल असिस्टेंस है वो जरूर मिलना चाहिए। मिलेट्स जब से आए हैं, मिलेट्स पर आधारित खाद्य पदार्थ और प्रोसेस फूड बहुत बड़े पैमाने पर बन रहे हैं जहां मिलेट्स होते हैं। तो और फिर क्वालिटी को अगर हम मेंटेन करते हैं उसके लिए उसको वो मदद, ये जो स्कीम है इसमें ये सब दिया जा रहा है,
1: जी
0: लेकिन इसका आकार बढ़ाने की जरूरत है।
1: हरवीर जी, दो छोटे छोटे सवाल हैं। पहला कि लोकल प्रोसेसिंग यूनिट से क्या एग्री सप्लाई चेन मजबूत हो रही है, और दूसरा कि छोटे स्तर पर जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, क्या ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार का सस्टेनेबल मॉडल बन रहे हैं, क्या कहेंगे आप?
2: सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि जो हमारे ग्रामीण युवा हैं, जो वहीं पर रुकना चाहते हैं और कुछ बड़ा सोच के काम करना चाहते हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटी है और उनके लिए मौका मिलना चाहिए। जो ट्रेनिंग है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और ट्रेनिंग में थोड़ा अभी कोशिश है इस स्कीम के सामने, लेकिन हमारे पास फूड प्रोसेसिंग के और फूड टेक्नोलॉजी के इंस्टीट्यूट्स हैं, निफ्टम्स हैं, तो जरूर इसमें इनिशिएटिव लेकर के जो इंटरेस्टेड बच्चे हैं उनको जोड़ने के लिए, वो थोड़ा उनको तैयार भी करना चाहिए इसके लिए कि आपके लिए यहाँ पर बड़ा इकोनॉमिक एक अपॉर्चुनिटी है, आप आगे जा सकते हैं और साथ में आप स्थानीय स्तर पर भी रोजगार के अवसर लोगों के लिए पैदा कर सकते हैं। फूड में ये फैक्टर जरूर है कि जो गुणवत्ता है और हाइजीन है, हमारा FSSAI है, उसके जो मानक है, उसके स्टैंडर्ड्स जो है, क्योंकि ये स्वास्थ्य से जुड़ा मसला है, तो वो उनको पूरा करते हुए ही अपने प्रोडक्ट्स को आगे लाएं। क्योंकि अगर आप जो फूड अथॉरिटी के जो स्टैंडर्ड्स हैं अगर आप उनको पूरा करेंगे और आपका प्रोडक्ट्स उस तरीके से बाजार में लोगों तक पहुंचेगा, तो इससे फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप स्थानीय स्तर पर बना रहे हैं या कोई बहुत बड़ी कंपनी बना रहे हैं, क्योंकि आप उसी लेवल पर उसकी क्वालिटी जो है, उसकी हाइजीन उस स्तर पर ला रहे हैं और आप कम्पीट कर सकते हैं, क्योंकि आपके ओवरहेड्स कम है, आप सोर्सिंग वही कर रहे हैं, आपकी जो चेन है सोर्सिंग से लेके मार्केटिंग तक की वो बहुत बड़ी नहीं है, तो इसलिए आपके एक्सपेंसेस जो है वो इकोनॉमिकल है दूसरों के मुकाबले। तो ये एक अच्छा बहुत ही मॉडल कामयाब हो सकता है, और इसको क्योंकि बात ही इसमें फॉर्मलाइजेशन से हो रही है, क्योंकि इनफॉर्मल इकोनॉमी में जो लोग हैं उनको फॉर्मल इकोनॉमी की तरफ बढ़ाना है हमें, और उसमें उनके जो FSSAI के उनके पास सर्टिफिकेट्स हो, उनके पास जो है ये बाकी टैक्सेशन की फॉर्मेलिटीज हो, वो सब इसका पार्ट है। तो मेरे ख्याल से ये एक बड़ी मुहिम के रूप में धीरे धीरे, जैसे लेकिन ये अभी रीजनेबल नंबर आ गया है, अगर 20,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की हम बात कर रहे हैं तो वो बहुत छोटा इन्वेस्टमेंट नहीं है, और इसके फुटप्रिंट्स पूरे देश में मिलेंगे, इनको थोड़ा और बड़ा करने की जरूरत है मेरे ख्याल से। और हम देख रहे हैं, अगर आप जाएंगे मार्केट्स में, बहुत सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं, बहुत बेसिक चीजें जो है मल्टीपल उसके प्रोडक्ट्स बना करके, चना में, मक्का में, और बहुत सारी है, जैसे मैंने मिलेट्स की बात की, मैं कुछ महिलाओं से एक बार मिला था हमारे कार्यक्रम में, वो आए उड़ीसा से, उन्होंने कहा कि जब ये हॉकी कप एक वहां पर जब हुआ था भुवनेश्वर में, वहां पर उनको अच्छा मार्केट मिला और अच्छे दाम मिले, क्योंकि मिलेट के बिस्किट्स जो है उनके बहुत बेहतर तरीके से उनको मार्केट मिला और पसंद किया गया। तो ये मतलब इस तरीके की जो अपॉर्चुनिटीज आती है मार्केट एक्सेस में, हमें इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि जहां इस तरह का कैप्टिव मार्केट होता है, कोई बड़े आयोजन होते हैं, वहां पर इन लोगों को मार्केट एक्सेस दिलवाना चाहिए, जिससे कि इनके जो बेहतर गुणवत्ता के उत्पाद हैं वो लोगों के बीच में पहचान बनाए और ये जो मार्केटिंग है वो फिर इनकी विकसित हो।
1: जी जगदीश जी, अगर इस योजना और खाद्य प्रसंस्करण को थोड़ा सा जोड़ कर देखें तो जो 44% महिला नेतृत्व वाले जो उद्यम हैं उनको स्वीकृत ऋण मिले हैं, साथ ही साथ 4 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को सीड कैपिटल मिली है, यानी जो महिलाओं को आज तक हम सहायक श्रम मानते आए थे, बहुत बड़े तबके के लिए सहायक श्रम की भूमिका थी उनकी, अब वो बिजनेस ओनरशिप में परिवर्तित होने जा रही हैं। आपको क्या लगता है, जब महिलाओं को फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में और ज्यादा तकनीकी तौर पर सक्षम बनाया जाएगा, उनको टेक्नोलॉजिकल इन्हेंसमेंट से सीधे तौर पर जोड़ा जाएगा,

0: तो आने वाले समय में जो हमारा लक्ष्य है कि हम ग्लोबल फूड प्रोसेसिंग हब भारत को बनाएं, उस दिशा में कितनी प्रगति आप देखते हैं?
1: मुझे लगता है महिलाएं बहुत बड़ा और हिस्सा है फूड प्रोसेसिंग यूनिट का, क्योंकि भारत में फूड प्रोसेसिंग कोई आज की नहीं है, अब तो टेक्नोलॉजी आ गई है। लेकिन अगर आप देखें कि कितनी चीजें हमारे घरों में बनती है, आज उस क्वालिटी की चीजें आपको बाजार में नहीं मिलती। हमारे नानियों दादियों ने क्या क्या नहीं बनाया, क्या क्या नहीं हमने खाया है। तो ये ऐसे ही नहीं बनती, फलों से, सब्जियों से, अनाज से, मोटे अनाज से, इन सब से वो बनाती रही है। मैं समझता हूँ उसमें अगर आप महिलाओं को बढ़ाना चाहते हैं तो जो पुरानी जो टेक्नोलॉजी है, जो पुराना उनका ज्ञान, पुराने जमाने की जो उनकी विधियां हैं, जो बहुत कम खर्च में ओवरहेड एक्सपेंसेस जिसको कहते हैं, वो कोई भी पदार्थ उसमें वेस्ट नहीं जाता। अभी तो हम अपने जो कृषि टोटल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसमें से सिर्फ 10% ही फूड प्रोसेसिंग कर पा रहे हैं, और फलों और सब्जियों में तो 2-3% ही कर पा रहे हैं। अगर हम उस टेक्नोलॉजी को आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ जोड़े, अपनाएं, तो आप यकीन मानिए वो महिलाएं ऐसा चमत्कार कर सकती है। 44% महिलाएं कम नहीं होती है। अगर एक योजना जिसमें 2 लाख से ज्यादा सेंक्शन हुए, 20,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश हो चुका है, उसमें अगर 44% महिलाएं हैं, तो ये मान कर चलिए कि महिलाएं इस योजना को आगे बढ़ा रही हैं। उनके उस ज्ञान को, जैसे ही क्या होता है, अगर आप कोई स्वयं सहायता महिलाओं का समूह है और उसमें जब कोई एक टेक्निकल विशेषज्ञ जाता है तो वो आधुनिक पढ़ाई लिखाई वाला होता है, वो जब उनको बताने लगता है तो वो हंसती है आपस में कि क्या बोल रहा है, इसको नहीं मान, ये ऐसे नहीं ऐसे बनता है। तो उस नॉलेज को इग्नोर नहीं करना चाहिए, वो ट्रेडिशनल नॉलेज है। उस नॉलेज को किस तरह से आप आधुनिक टेक्नोलॉजी के ज्ञान के साथ जोड़ते हैं, उसका बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट निकलने वाला है। जिन देशों ने फूड प्रोसेसिंग को आगे बढ़ाया, उन्होंने पुराने नॉलेज को छोड़ा नहीं है, पुरानी टेक्निक्स को छोड़ा नहीं है, उसको उन्होंने उसको नया रूप दिया, टेक्नोलॉजी में उसको अडाप्ट कर लिया। तो ये अडाप्टेशन अगर आप करते हैं इस योजना में, तो यकीन मानिए महिलाएं इस योजना की मतलब कर्णधार हो सकती हैं। और बड़े पैमाने पर कितना प्रोड्यूस हमारा बेकार जाता है, आलू पश्चिम उत्तर प्रदेश में पैदा होता है, बेकार फेंका जाता है, क्योंकि फूड प्रोसेसिंग की यूनिट नहीं है, अगर है तो उसकी क्षमता उतनी नहीं है। टमाटर कितने ही राज्यों में टमाटर फेंक दिया जाता है, छत्तीसगढ़ में तो एक पूरा जिला है टमाटर से सड़कों पर फेंक देते हैं, प्रोसेसिंग की यूनिट नहीं है। फिर प्रोसेसिंग की यूनिट अगर लगा दी जाए तो उसको मार्केट एक्सेस नहीं है, और वो उस क्वालिटी में उसको मिलना चाहिए, जीवन अवधि है, तो वो प्रोड्यूस उस अवधि में पहुंच जाए कंज्यूमर तक, ये सब व्यवस्था अपने को सोचनी पड़ेगी। और उसके लिए जो मैं जोर इस बात पर है कि जो पुरानी विधियां हैं उनको नई टेक्नोलॉजी से जोड़ा जाएंगे, तो आप यकीन मानिए महिलाएं जो आज कर रही है ना, जो स्वयं सहायता समूह की छोटे छोटे उद्यम चला रही हैं, जैसे मिलेट्स के बिस्कुट छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर गांव गांव में ये बन रही है चीजें, लेकिन उसकी क्वालिटी और उसकी पैकेजिंग, ये दोनों को संभालने की जरूरत है। तो अगर आप पुराने ज्ञान को नए ज्ञान के साथ मिलाते हैं, अगर मशीनरी नहीं है तो बनाई जा सकती है, जैसे मैंने कहा कि 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से बहुत सारी चीजें लोग बना रहे हैं। मैंने छोटे स्थानों पे, अमरावती महाराष्ट्र का छोटा स्थान है, वहां 2-3 यूनिट्स देखी जो 3D टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, तो उसमें उनको एक इंजीनियर मिल गया, उसके सहारे उन्होंने इसको अपना लिया। तो ये नए प्रयोग वो लोग उनके दिमाग में आते हैं, हमने एक योजना बना दी और योजना का एक फिक्स ढांचा है, तो उसको थोड़ा सा ओपन रखना चाहिए कि हाँ ठीक है, इसको भी हम लेंगे और इस पर भी हम विचार करेंगे। इसमें आपके पास 4 ऐसी योजना है, फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय जो है, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना और PMFEMA के साथ में ये प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम भी है, जो इन सब योजनाओं में कैसे लिंकेज हो और इन सब योजनाओं का लाभ फूड प्रोसेसिंग को कैसे मिले, मंत्रालय इसके लिए कोशिश कर रहा है, नो डाउट, मतलब उनके उद्देश्यों में भी लिखा है, और ये सब योजनाएं फूड प्रोसेसिंग को मदद करती है, उस सेक्टर को आगे बढ़ा रही है। लेकिन इसमें थोड़ा जो हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको शामिल करना चाहिए, ओपननेस होनी चाहिए कि अच्छा हम इसको ऐसे बनाते हैं, ऐसे हमारा बनाने का एक फार्मूला है, उस फार्मूले के अलावा अगर पुराना कोई अच्छा फार्मूला है तो हम उस फार्मूले को अपनाएंगे। तो यकीन मानिए हमारा, हम बहुत ग्रोथ कर सकते हैं, इसमें ग्रो करने की जबरदस्त संभावना है। अभी हम 30.5 लाख करोड़ के आसपास का ये सेक्टर है, इसको आप 4 गुना ले जा सकते हैं, इतनी क्षमता हमारे इस सेक्टर में है। तो मैं समझता हूँ कि योजना एक उस दिशा में बहुत अच्छा कदम है, और इसको इन सब चीजों पे ध्यान रखने की जरूरत है। और मेगा फूड पार्क्स और जो ये बड़ी पीएम किसान संपदा योजना के तहत बन रहा है, कोल्ड चेन्स बन रही है, एग्रो प्रोसेसिंग का क्लस्टर बन रहा है, उनमें जो लोग काम कर रहे हैं, जो विशेषज्ञ हैं, टेक्नीशियंस हैं, उनको गांव में जाना चाहिए आसपास के, और जहां वो प्रोड्यूस है, लोकल प्रोड्यूस है, उसको कैसे मदद दी जाए ये कोशिश करनी चाहिए, उनको कैसे हम सहायता दे सके, उसको जब आप इस PMFEMA से जोड़ेंगे तो बहुत अच्छा उसका मुझे लगता है। मेगा फूड प्रोसेसिंग पार्क देने से अब बात नहीं बनती है, उसके साथ नीचे भी लोगों को जोड़ा जाना चाहिए।
0: हरवीर जी, कार्यक्रम में अब

0: समय कम है, एक आखिरी सवाल आपसे समझना चाहेंगे कि कोविड के समय इस योजना को शुरू किया गया था, बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है, अगर भविष्य की बात करें तो अगले 5 से 10 वर्षों में आप इस योजना से भारत के ग्रामीण इलाकों की प्रगति को कैसे देखते हैं और क्या आपको लगता है कि जैसे जैसे इस योजना का दायरा और व्यापक होता जाएगा ग्रामीण क्षेत्रों से होने वाला पलायन जो एक गंभीर समस्या है उस पर भी बहुत हद तक नियंत्रण पाया जा सकेगा?
1: बिल्कुल, देखिए एक तो अभी तक के जो नतीजे हम देख रहे हैं वो काफी प्रॉमिसिंग है। दूसरी बात ये है कि ये हमें हमारे तमाम सारे पॉलिसी एक्सपर्ट और इकोनॉमिस्ट ज्यादातर ये सब मान चुके हैं कि जो लिबरलाइजेशन में हमने उम्मीद लगाई थी कि लोग कृषि और ग्रामीण क्षेत्र से निकलकर बड़ी इंडस्ट्रीज और सर्विस सेक्टर में जाएंगे उसकी संभावनाएं अब कम है। हमें जो रास्ता ढूंढना है इन लोगों के लिए, उनके इकोनॉमिक वेलबींग का, उनके बेहतर फ्यूचर का, वो कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में ही ढूंढना है। तो ऐसे में इस तरह की स्कीम को और बेहतर करके और वहां पर और ज्यादा संभावनाएं पैदा करके क्या हम कर सकते हैं, कैसे जो बड़ा निवेश ला सकते हैं, वो करना पड़ेगा और करना चाहिए। मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं कि बिहार में कुछ इस तरीके का एक छोटे स्तर पर सोलर पावर कोल्ड रूम बनाए बहुत ही पायलट लेवल पे, और उसमें महिलाओं ने अपने जो, जैसे उपासनी जी बता रहे थे कि किस तरीके से हमारे फल और सब्जियां वेस्ट हो जाती हैं बड़े पैमाने पर, उन्होंने उसमें रखना शुरू किया और उनको एक मेंबर बना करके किया गया काम। तो ये छोटा सा काम था लेकिन उनके लिए एक बहुत बड़ा बदलाव आया क्योंकि उनका वेस्टेज कम हो गया, उनके प्रोड्यूस को बेहतर दाम मिलने की स्थिति पैदा हो गई। इसमें भी हमें यह भी देखना पड़ेगा कि जो शेल्फ लाइफ जिस तरीके के प्रोडक्ट प्रोसेस होकर के आते हैं उनका अगर कम है तो कम्युनिटी लेवल पर उनके लिए ये इस तरीके के कलेक्टिव जो अप्रोच के जरिए जो फैसिलिटी है उसमें भी साथ में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और उसके लिए कहीं ना कहीं कोई ऐसा तंत्र सरकार को बनाना चाहिए जो इनके साथ सीधा जुड़ सके।
0: छोटे छोटे कदम जब एक दिशा में बढ़ते हैं तो वो सिर्फ रास्ते नहीं बदलते, पूरी तस्वीर बदल देते हैं। पीएम एफएमई योजना सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं बल्कि उन लाखों हाथों की ताकत है जो अपने हुनर से आत्मनिर्भर भारत की नींव रख रहे हैं, जहां एक छोटा सा यूनिट एक परिवार की उम्मीद बनता है और वही उम्मीद पूरे गांव की अर्थव्यवस्था को गति देती है। आज की चर्चा से ये साफ है कि जब नीतियां जमीन से जुड़ती हैं तो बदलाव सिर्फ आंकड़ों में नहीं जिंदगियों में दिखाई देता है। हमारे अतिथि जगदीश उपासने जी और हरवीर सिंह जी इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय हमारे श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।
2: धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे खाद्य प्रसंस्करण से उद्यमिता और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिल रहे प्रोत्साहन पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह और वरिष्ठ पत्रकार जगदीश उपासने। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
4: चर्चा का विषय है।

0: आपूर्ति श्रृंखला पर सबसे अधिक दबाव दिख रहा है। ऊर्जा, भोजन और स्वास्थ्य सुरक्षा को अब हल्के में नहीं लिया जा सकता। इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करना बहुत जरूरी है। वर्ष 2026 को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष के तौर पर मनाया जाएगा। साथ ही भारत और आसियान दोनों ही अपने भविष्य को लेकर उम्मीद से भरे हैं, इसलिए चुनौतियों का सामना करते हुए भी हमें मौकों पर पूरी तरह ध्यान देना चाहिए।
1: बैठक के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि बैठक में भारत अमरीका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया। इनमें व्यापार, शुल्क, ऊर्जा, रक्षा सुरक्षा, महत्वपूर्ण खनिज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शामिल हैं। डॉक्टर जयशंकर ने यह भी कहा कि उन्होंने पारस्परिक हित के क्षेत्रीय, वैश्विक और बहुपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्री ने ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग से भी मुलाकात की। पत्तनपोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचावास्केस से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री सोनोवाल ने बताया कि बैठक के दौरान उन्होंने बंदरगाह विकास, सीधे जहाजरानी मार्गों की स्थापना और नाविकों के कल्याण सहित समुद्री क्षेत्र में साझा शक्तियों का लाभ उठाने के तरीकों पर चर्चा की। अमरीका ने यमन के हूती विद्रोहियों द्वारा सऊदी अरब के खिलाफ नौसैनिक नाकाबंदी की घोषणा के बाद अमरीका ने लाल सागर में वाणिज्यिक जहाजों के आवागमन को खतरे में डालने की निंदा की है। एक रिपोर्ट।
2: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने सऊदी अरब के खिलाफ हूती विद्रोही समूहों की नौसैनिक नाकाबंदी के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन उम्मीद व्यक्त की कि स्थिति में सुधार हो सकता है। फिलीपींस में एक क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि लाल सागर से होकर जहाजों के आवागमन को प्रतिबंधित करने वाली कोई भी चीज उसी कारण से समस्याग्रस्त होगी जिस कारण से होर्मुज जलडमरू मध्य समस्याग्रस्त है। उन्होंने कहा कि अमेरिका स्थिति पर कड़ी नजर रख रहा है। हूती ने सऊदी अरब के खिलाफ नौसैनिक बंदी की घोषणा करके एक नया मोर्चा खोल दिया है। इससे वैश्विक तेल आपूर्ति और व्यापार का प्रवाह खतरे में पड़ गया है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरो फिलीपींस में दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ के बहुपक्षीय सम्मेलन में कल अमरीकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से भेंट करेंगे। श्री लावरोव ने बताया कि उन्होंने कल मनीला में श्री रूबियो से संक्षिप्त मुलाकात की थी। उन्होंने कहा कि रूस अब भी मानता है कि अमरीका पिछले वर्ष अगस्त में एंकोरेज में हुए रूसी अमरीकी शिखर सम्मेलन में व्यक्त किए गए प्रस्तावों से पीछे नहीं हटा है। इस बीच अमरीका के रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ ने बताया कि रूस और चीन ईरान की मदद कर रहे हैं। ईरान ने वाणिज्यिक जहाजों पर हमले फिर से शुरू कर दिए हैं। इसके जवाब में अमरीका ने होर्मुज जलडमरू मध्य के आसपास सैन्य अभियान तेज कर दिए हैं। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तरी मैसेडोनिया की अपनी राजकीय यात्रा के दौरान आज स्कोब्जे शहर के संग्रहालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी भारत के थे, लेकिन सत्य और अहिंसा का उनका संदेश समस्त मानवता का है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि संघर्ष, असहिष्णुता और विभाजन से जूझ रही दुनिया में गांधी जी के संवाद, करुणा और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के आदर्श अत्यंत प्रासंगिक बने हुए हैं। भारत ने ब्रिक्स 2026 की अध्यक्षता के तहत कल चंडीगढ़ में पारंपरिक पूरक और एकीकृत चिकित्सा पर ब्रिक्स सम्मेलन की सफलतापूर्वक मेजबानी की। ये सम्मेलन चंडीगढ़ में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा आयुष मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित ब्रिक्स स्वास्थ्य कार्यक्रम के 4 दिवसीय व्यापक कार्यक्रम का हिस्सा था। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों ब्राजील, चीन, मिस्र, इथोपिया, भारत, ईरान, रूस, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात ने भाग लिया। कांगो में इबोला के प्रकोप से अब तक 1,000 लोगों की मौत हो चुकी है। कांगो के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार नवीनतम प्रकोप में 2,000

0: 473 मामले दर्ज किए गए हैं और 999 लोगों की मौत हो चुकी है। मंत्रालय ने बताया कि इस समय 737 मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं। 15 मई को घोषित ये प्रकोप पिछले अधिकांश इबोला प्रकोपों से अलग है। इसके लिए जिम्मेदार बुंडी बुगियो वायरस का कोई स्वीकृत टीका या उपचार उपलब्ध नहीं है। घाना में कल अफ्रीका स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन में अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र के महानिदेशक जीन कासेवा ने प्रकोप को धीमा करने के लिए गहन प्रयासों का आह्वान किया। पश्चिमी नेपाल में आज सुबह 4.2 तीव्रता का भूकंप आया। राष्ट्रीय भूकंप निगरानी और अनुसंधान केंद्र के अनुसार भूकंप का केंद्र सुदूर पश्चिम प्रांत के बाझंग जिले के कोटदेवाल के आसपास था, जो काठमांडू से लगभग 900 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। भूकंप के झटके पड़ोसी जिलों बाजुरा और दारचूला में भी महसूस किए गए। अभी तक जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। चीन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और आयुष शेट्टी लक्ष्य सेन ने सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने हमवतन उन्नति हुडा को हराया। वहीं पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी ने इंडोनेशिया के अलवी फरहान को शिकस्त दी, जबकि लक्ष्य सेन ने जापान के युशी तनाका को हराया। भारत के युवा स्क्वाश खिलाड़ी अनाहत सिंह और आर्यवीर दीवान ने शानदार प्रदर्शन करते हुए विश्व स्क्वाश जूनियर व्यक्तिगत चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। दोनों खिलाड़ियों ने अपने अपने मुकाबलों में सीधे गेम में जीत हासिल कर अगले दौर में प्रवेश किया। महिला वर्ग में शीर्ष वरीयता प्राप्त अनाहत सिंह ने राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में हांगकांग की पुई यिन चोले लो को 11-3, 11-1, 11-3 से हराया। अब उनका सामना मलेशिया की 13-16 सीड डोएस ये सैनली से होगा। वहीं पुरुष वर्ग में सीड आर्यवीर दीवान ने भी शानदार खेल दिखाया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज दोपहर पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और आसियान क्षेत्रीय मंच की बैठकों के दौरान कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत कनाडा सहयोग लगातार बढ़ रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। क्वाड के विदेश मंत्रियों ने फिलीपींस के मनीला में आयोजित बैठक में स्वतंत्र, खुले और समावेशी इंडो पैसिफिक के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। अमरीका ने यमन के हूती समूह द्वारा लाल सागर में सऊदी अरब के खिलाफ की गई नौसैनिक नाकाबंदी के लिए ईरान को दोषी ठहराया। रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव कल फिलीपींस में आसियान सम्मेलन के दौरान अमरीकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात करेंगे। और चीन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु, आयुष शेट्टी और लक्ष्य सेन सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। I am Reshma Tiwari with the World News. The headlines. Quad foreign ministers reaffirm commitment to free, open and inclusive Indo-Pacific. Hold meeting at Manila in Philippines. US blames Iran for naval blockade against Saudi Arabia in Red Sea by Yemen's Houthi group. Russian Foreign Minister Sergei Lavrov to meet with US Secretary of State Marco Rubio tomorrow on sidelines of ASEAN in Philippines. And in China Open Badminton, PV Sindhu and Ayush Shetty enter singles pre-quarterfinals. External Affairs Minister Dr. S. Jayshankar today participated in Quad Foreign Ministers meeting at Manila in Philippines. In a joint statement, India, Japan, Australia and United States reaffirmed the commitment to strengthen a free and open Indo-Pacific and their unwavering support for ASEAN unity and centrality. During the meeting, they focused on regional challenges and opportunities to support the ASEAN outlook on the Indo-Pacific. Key discussion areas included maritime and transnational security, economic prosperity, critical and emerging technologies.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विकसित भारत का सपना जन आंदोलन में बदलना चाहिए और देश के युवाओं को इस परिकल्पना की नींव बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों का कल्याण सभी सुधारों के केंद्र में होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और संबद्ध क्षेत्रों में विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा के लिए सचिवों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विरोध प्रदर्शन और अन्य मुद्दों पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा में हंगामे के बीच सदन ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बैनर्जी को मॉनसून सत्र के शेष समय के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव पारित किया। पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद टेनेटी ने कहा कि कल्याण बैनर्जी ने महिला सांसदों को निशाना बनाते हुए आपत्तिजनक और संसदीय टिप्पणी की।
1: आज श्री कल्याण बनर्जी ने हमारी महिला सांसदों के साथ असंसदीय भाषा एवं असंसदीय टिप्पणियां की है, जिसकी लिखित शिकायत माननीय अध्यक्ष जी को प्राप्त हुआ है। ये सदन की गरिमा के विरुद्ध है।

0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है।
1: सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है। मैं अनुरोध करता हूँ कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन और किस नियम के तहत होना है। माननीय स्पीकर महोदय, सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए।
0: राज्यसभा में भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिली। उपसभापति हरिवंश ने कहा कि सरकार नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को सदन चलाने में सहयोग करना चाहिए। सदन के नेता जेपी नड्डा ने विपक्ष के आचरण की कड़ी निंदा करते हुए इसे गैर जिम्मेदाराना और लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध बताया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेल सुरक्षा में सुधार, बुनियादी ढांचे के रखरखाव और आधुनिक तकनीकों के उपयोग से रेल दुर्घटनाओं में भारी कमी आई है। लोकसभा में आज एक लिखित प्रश्न के उत्तर में श्री वैष्णव ने कहा कि वर्ष 2014-15 में हुई 135 रेल घटनाओं की संख्या घटकर इस वित्त वर्ष में अब केवल 2 रह गई है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को प्रदर्शनकारियों के संसद मार्च के दौरान कथित रूप से अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और दिल्ली पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। न्यायालय ने अधिकारियों को सीसीटीवी फुटेज और वीडियोग्राफी सहित पुलिस कार्रवाई से संबंधित सभी प्रासंगिक रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता जेपी नड्डा ने कहा है कि नीट पेपर लीक के मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। श्री नड्डा ने कहा कि ये गंभीर मामला है और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है। उन्होंने कहा कि सरकार संसद में नीट के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष चर्चा की अवधि तय करे और सभी पहलुओं पर खुलकर बात करें ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। उन्होंने विपक्ष से इस मुद्दे के समाधान के लिए सरकार का साथ देने की अपील भी की। दिल्ली मेट्रो नेटवर्क के सभी स्टेशन अब यात्रियों के लिए खुल गए हैं। इससे पहले दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सुरक्षा कारणों से 17 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए थे। चीन के चांगझोउ में चल रहे चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की पीवी सिंधु, आयुष शेट्टी और लक्ष्य सेन ने सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। महिला सिंगल्स के पहले दौर में पीवी सिंधु ने हमवतन उन्नति हुड्डा को हराया। पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी ने इंडोनेशिया के अल्वी फरहान को हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। वहीं लक्ष्य सेन ने जापान के युशी तनाका को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेशमा तिवारी। Prime Minister Narendra Modi has emphasized that the dream to build a Viksit Bharat should become a Jan Andolan and the country's youth should form the foundation of this vision. He said the welfare of citizens must remain at the heart of all reforms. The Prime Minister made the remarks while chairing a high-level meeting with secretaries to review the progress of rural development, agriculture, social welfare and allied sectors towards Viksit Bharat goals in New Delhi. The meeting was attended by the Cabinet Secretary, secretaries of key ministries as well as senior officials from the Prime Minister's office. The Prime Minister underscored the importance of tackling the serious issue of drug abuse among youth. He also stressed the importance of promoting technology and fostering innovation through startups in the sports sector. The government today reiterated its readiness for meaningful discussion on NEET paper leak issue in the parliament. Speaking in the Lok Sabha, Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju said the government was prepared for a meaningful debate on the issue involving all sides under established parliamentary rules, keeping in mind the future of the country's youth. Mr. Rijiju's remarks came as both houses of parliament witnessed repeated disruptions by the opposition for the third consecutive

0: किसी मौसम का झोंका था जो इस दीवार पर लटकी हुई तस्वीर तिरछी कर गया है। गए सावन में ये दीवारें यूं सीली नहीं थी, न जाने इस दफा क्यों इनमें सीलन आ गई है, दरारें पड़ गई हैं और सीलन इस तरह बहती है जैसे खुश्क रुखसारों पे गीले आंसू चलते हैं।
1: सघन सावन

ये बारिश गुनगुनाती थी, इसी छत की मुंडेरों पर ये बारिश गुनगुनाती थी, इसी छत की मुंडेरों पर ये घर की खिड़कियों के कांच पर उंगली से लिख जाती थी।

0: दोपहरें ऐसी लगती हैं बिना मोहरों के खाली खाने रखे हैं, न कोई खेलने वाला है बाजी और न कोई चाल चलता है।
1: लाख बार उसमें

न दिन होता है अब न रात होती है, सभी कुछ रुक गया है। वो क्या मौसम का झोंका था जो इस दीवार पर लटकी हुई तस्वीर तिरछी कर गया है।